ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के

0: सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात ओडिशा राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी उदयपुर सवेरे के 6:05। आइए करते हैं प्रभु की स्तुति कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

भक्ति भौतिक सुखों के लिए नहीं, अपितु आध्यात्मिक सुखों के लिए होनी चाहिए। सुख का साधन प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सुख नहीं। यह निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही लेना पड़ता है कि वो किस ओर

और में सब कुछ भौतिक और अभौतिक दोनों सर्वोच्च चेतना या ईश्वर से आया है। एक भक्त अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। भक्ति दिव्य प्रेम या सार्वभौमिक प्रेम।

अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:35 हो रहे हैं। आइए अब रूबरू करवाते हैं आपको आज के प्रमुख कार्यक्रमों से।

अब से थोड़ी देर में यानी कि 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे, एपिसोड 98। 6:50 पर महिला बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम खेती में आज। 7 सदापार नगमे होंगे। 7:45 पर सुगम संगीत और 8:30 पर आप सुनेंगे नमस्कार उदयपुर। आज हम बात करेंगे विश्व साइकिल दिवस, स्थानीय खबरें आपको बताएंगे, साथ ही साथ प्रेरणा क्षेत्र में बात होगी उपासना टाकू पर। साइकिल से जुड़े तथ्य और स्पर्धाएं इस पर भी हम जो है आपको जानकारी देंगे। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। 10 कुछ बातें कुछ गीत और 11 घोखड़ा कार्यक्रम आप सुनेंगे। 11:30 पर सुगम संगीत होगा और 12 फिल्म संगीत।

दोपहर 1:05 पर महिला जगत आप सुनेंगे बढ़ती गर्मी और बढ़ती जीवन शैली पर बातचीत होगी, महिला स्वयं सहायता समूह की सफलता और चर्चा होगी विश्व साइकिल दिवस पर, साथ ही साथ गीत भी आपको सुनवाएंगे। 1:45 पर आप सुनेंगे विकास चर्चा और 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम, जिसमें पशु टीकाकरण के लाभ और राजस्थानी गीत आपको सुनवाएंगे। और शाम 5 युवाणी कार्यक्रम आपके लिए होगा, हमारे युवा श्रोता सुनेंगे ये कार्यक्रम। और शाम 6:05 पर फिल्म संगीत। शाम 6:40 पर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले होगी। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार भी आप जयपुर से सुनेंगे। 7 खेती और घर कार्यक्रम होगा, जिसमें होगी चौपाल रिपात कृषि कार्यों के समय प्रबंधन का महत्व पर, एग्रोमेंट एडवाइजरी मौसम जानकारी हम आपको देंगे, योजना के बारे में हम बताएंगे आज किसान क्रेडिट कार्ड पर, कृषि विशेषज्ञ से संवाद भी होगा, साथ ही साथ प्रमुख दिवस यानी कि विश्व साइकिल दिवस पर बातचीत करेंगे। रात 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:45 पर समाचार संध्या होगी। 9:15 पर सुगम संगीत आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। 9:30 पर चर्चा का विषय है हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। रात 10 स्वास्थ्य संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 11 हिंदी में समाचार होंगे।

ये थे हमारे केंद्र से आज और प्रसारित होने वाले और रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:40 होने को है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का।

राजा जनक के यज्ञ में शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिवजी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चर जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्रीराम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

श्री रामचरितमानस गान आप सुन रहे थे, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:50 होने को है। अब आप सुनेंगे खेती में आज।

खेती में आज हुआ वाला हंगले किसान भाई बहना ने नंदू भाई रो राम राम सा। देखो किसान भाई बहनों, जून रो महीनो चाली रो है सा, और अणी महीना में आपने कशा कशा कृषि संबंधी कार्य करना है, अणी महीना में आपने कई कई बातों रो ध्यान रखना है। अंडे बारे में बात करा तो देखो आप ही जाना कि खेती में जत्रो महत्व बारिश रो वेवे है, वत्रो इस महत्व देखो गर्मी रो भी वेवे है। और वैज्ञानिक सिफारिश करे है कि मई जून में खेतारी गहरी जुताई आपने करनी पड़े। कई है कि जुताई खेत में जतरा भी हानिकारक कीट और रोगाणु वेवे भी ऊपरी सतह पर आई जावे और तपती धूप में नष्ट हो जावे सा। कीट और रोग रोकवारो यो कुदरती तरीको है और कणी भी रसायनों ज्यादा कारगर है। अणियों कही है कि आगामी ऋतु में फसल उगावर वाते खेत अपनो जो है सुरक्षित बह जावे। बारिश री मात्रा भले ही पहले जितनी नहीं बेवे, लेकिन वंडो वितरण जो है असमान वह गयो है सा। पहली बारिश रही रहन पूरा खरीफ मौसम में चलती रहती ही और फसल ने पूरा जीवन काल में सिंचाई मिलती रहती ही। अब एवटिस टुकड़ा टुकड़ा में बारिश वेवे है सा। कनान कनान भारी बारिश भी वेवे तो कदी कदी दोहो फुहार रे बीच लंबो सूखो अंतराल भी आई जावे सा। और ये दो स्थितियां फसल रे वाते नुकसानदायक वेवे है और किसान और अन्य ध्यान में रखता थका आवश्यक वेग्यो है कि आपनी खेती में वंडे अनुसार बदलाव भी करनो पड़ेगा सा। और ज्यादा वर्षा रे पानी ने अपने खेत में ही संचित करनो है ताकि कही एक सूखा रे दौरान सिंचाई रे पानी री उपलब्धता वनी थकी रहे। अणी प्रकार रे संचयन ने अपी कहवा कि गांव रो पानी गांव में और खेत रो पानी खेत में सा। और अणी मीना में देखो खाली खेत में

खरीफ फसल की बुआई की तैयारी अपने शुरू कर देनी है। क्षेत्र विशेष रे आधार पर अपने उपलब्ध जल और दूसरा संसाधन रे आधार पर अणी टाइम पे खरीफ फसल री बुआई रे अपने कार्य योजना बनावनी है। ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र रे लारे लारे सिंचाई री समुचित व्यवस्था वाला क्षेत्र में धान री रोपाई रे वास्ते पौध तैयार करी जा सके सा। बारानी क्षेत्र में ज्वार बाजरो मक्को रागी मडुआ रे लारे लारे तिलहनी फसल जैसे की मूंगफली है सूरजमुखी है सोयाबीन है तिल कुसुम अरंडी रेशेदार फसल जैसे की कपास है जूट रे लारे लारे चारा फसला जैसे कि ज्वार बाजरो मक्का लोबिया ग्वार और लसुन आदि री फसला री बुआई रे प्रबंध आपी एनी टाइम पे कर सका सा। मानसून आवारे बाद तैयार पौधरी रोपाई जुलाई में आपी कर दंगा सा। धान री नर्सरी और दूसरा शस्य प्रबंधन में सुझाई गई उन्नत जी शस्य क्रिया है वणा ने आपी अपनावना चावा जिन्हों कही है कि ज्यादा उत्पादन आपने मिलेगा सा। अणी महीना में कृषि कार्यालय ने करवारे वाते मौसम आधारित कृषि परामर्श ने भी अपने ध्यान में राखणो चावे सा। मौसम में वेवा वाला बदलाव खास तौर पर मानसून रे टेम पर अस्थिर वेवाओं खरीफ फसलारी अनुमानित नुकसान ने कम करवारे वाते आकस्मिक आपने फसल योजना रे वाते जरूरी संसाधन जैसे कि बीज रो प्रबंध भी अणी टाइम पे आपने कर लेनो चावा सा। फसला रे अनुसार आवश्यक उन्नत शस्य क्रिया रो विवरण भी आपने तैयार कर लेनो है सा। अणी मीना में देखो अबे आपने कशा कशा काम करना है वनडे बारे में बात करा और सब पहली देखो फसला रे उत्पादन री बात करा तो देखो सिंचित मूंगफली री बुआई रो उपयुक्त समय जून माह रो प्रथम सप्ताह दूसरे सप्ताह तक है और मिट्टी री जांच रे आधार पर अंतिम सप्ताह पहली आपने प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम आपने मिलावनो है। मूंगफली रे खेत में प्रति हेक्टर 60 किलोग्राम फॉस्फेट और 15 किलो नत्रजन 130 किलो डीएपी या 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलो यूरिया जो है बुआई पहली नायलेर में उरीन आपने देनो है सा। फास्फेट तत्री पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा कियो जा सके सा। और मूंगफली में गलगट यानी कि कॉलर रोट रोग बचाव रे वाते बुआई पहली आपने प्रति किलो बीज ने 3 ग्राम थायरम 75% WP या 2 ग्राम माइनकोजेब उपचारित करनो है सा। रासायनिक फफूंद नाशी रो उपयोग जो है कम करनो बीज ने थायरम 1.5 ग्राम और टाइकोडर्मा 8-10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और राइजोबियम कल्चर 3 पैकेट प्रति हेक्टर दर उपचारित करीन बुआई आपने करनी है। अंडे लारे इस बुआई रे पहली आपने टाइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर 100 किलोग्राम गोबर खाद में मिलेन भूमि में मिलावनो है सा। मूंगफली री फसल में सफेद लटरी रोकथाम रे वाते क्लोथियनिडिन 50 WDG 2 ग्राम प्रति लीटर किलोग्राम जो है अपने उपचारित करीन बीज वावना है सा। बीज री 2 घंटे तक छाया में सुखाइन बुआई करनी है। कपास में सफेद मक्खी ग्रे वीविल जोसिड और थ्रिप्स रे नियंत्रण रे वाते कीट दिखाई देवा पर डाइमिथियोड 30 EC दवा या मिथाइल डेमोटेन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर रो छिड़काव करनो है या मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण या 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर दरू बुरकाव करनो है सा। अबे आपी बागवानी री बात करा तो देखो नींबू वर्गीय फलदार पौधा में फल गिरवारी समस्या री रोकथाम रे वाते प्लेनोफिक्स हार्मोन रो 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी रे गोल में अपने मलेन पर से छिड़काव करनो है सा। आंवला में बोरेक्स रो 0.4% 4 ग्राम प्रति लीटर पानी और जिंक सल्फेट रो 0.2% यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रो अपने गोल वणी पचे छिड़काव करनो है सा। अंगूर रो जल्दी पाकवा और मिठास बढ़ावा रे वास्ते एथिफोन 50 मिलीलीटर बोरेक्स 100 ग्राम 100 लीटर पानी में गोल वणीन पकवारे 15 दिन पूर्व आपने छिड़काव करनो है सा। अणी टाइम पे सिंचाई पूर्णतः आपने बंद राखनी है सा। अबे आपी सब्जियां री बात करा तो देखो भिंडी री खरीफ फसल री बुआई जून माह में अणी टाइम पे आपने करनी है। भिंडी री अर्का अभय परभनी क्रांति पूसा मखमली पूसा असावनी अर्का अनामिका किस्मारो 10-12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर दर अपने बुआई करनी है सा। कुकुरबिट्स बैंगन और टमाटर में माइट्स री रोकथाम रे वात है मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर या डायकोफाल 18.5 EC दवा 1.25 लीटर प्रति हेक्टर दर आपने छिड़काव करनो है सा। कुष्मांड कुलरी सब्जियां में फल मखीरी रोकथाम रे वाते मेलाथियन 50 EC या डाइमिथियोड 30 EC 1 मिलीलीटर दवा रो प्रति लीटर पानी में प्रति हेक्टर दर छिड़काव
करनो है सा। अणि हरा तेला और मोइलारे नियंत्रण में भी अपने मदद मिलेगा सा। टमाटर बैंगन और मिर्च री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौध रो खेत री निश्चित दूरी पर अपने रोपण करनो है। मिट्टी री जांच रिपोर्ट रे आधार पर सिफारिश की गई खाद और उर्वरक रो भी अपने उपयोग करनो है सा। फूल गोभी री अणि माह में पूसा कार्तिकी पूसा दीपाली किस्मरी बुआई अपी कर सका।

अंडे वास्ते 600-750 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर अपने आवश्यकता पड़ेगा। बीजा ने कार्बोडेजियम 1 ग्राम या कैप्टान 50% WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज हिसाब अपने उपचारित करी नर्सरी में बुआई करनी है सा। अब आप पुष्पा रे उत्पादन रिवाद करा तो वर्षाकालीन मौसमी फूल जैसे कि गेंदा है, बालसम है, जीनिया है, सूरजमुखी, कॉक्सकॉम आदि री नर्सरी एनी टाइम पे आप तैयार कर सका। तैयार नर्सरी में झारा में नियमित सिंचाई आपने करतो रहनो है और खरपतवार ने भी निकालतो रहनो है सा। क्यारा में लागी थकी गुलदाउदी रे सकर्स ने आपने अलग करन लगावना है सा। गेंदा री वर्षाकालीन फसल री पौध रो खेता में आपने रोपण करनो है। कतारा रे बीच 60-90 सेंटीमीटर और पौधा रे बीच में आपने 45-60 सेंटीमीटर दूरी बनाई रखनी है। रजनी गंधारी फसल में प्रति स्पाइक फूलरी संख्या और स्पाइक री लंबाई बढ़ावारे वाते GA3 जिब्रेलिक एसिड जन्य अपिका 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में गोल बनाई अपने पर्णीय छिड़काव अवश्य करनो है सा। किसान भाई बहनों देखो यो तो आप ही बात की थी कि देखो ये जून रो महीनो शुरू हो गयो है सा और आनी टाइम पे आपने कशा कशा कृषि संबंधी कार्य करना है सा और बातचीत तो और भी आप करवा री इच्छा है लेकिन घड़ी आड़ी देखा तो माने चालवारो टाइम भी रो है तो नंदू भाई ने आज्ञा दो सा राम राम सा।

भाई बहन सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम खेती में आज। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7 बजने को है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने आपके लिए चुना है। फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियाँ, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की।

तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और अब जो आपके रेडियो सेट पर गीत आ रहा है वो है फिल्म नाम से, आवाज़ पंकज उधास की।

स्वयंवर फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आइए अब सुनते हैं काला पत्थर फिल्म का एक गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की एक बार फिर आवाज़ है और संगीत है राजेश रोशन का।

अनामिका फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत था। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए चुना है, स्वीकार किया मैंने फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: दी, हाँ ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो सही जगह निवेश।

0: करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
0: RBI कहता है,
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

कन्यादान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं हंसराज हंस के गाए गीत।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।

0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नों में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल

0: करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवान्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खोजे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं

0: किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की दो दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है और न ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insights into India's technological and industrial capabilities. With Ishani and Dipendra, Tripti Srivastava, Akashwani News, Delhi.
2: Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4:05 p.m. More from our correspondent.
5: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivakumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress Chief Ministers, religious leaders, labourers, writers, actors and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School have also been called for the ceremony as it is the place from where Shivakumar hails from. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. More from our correspondent.
6: In the first phase, beneficiaries will start receiving rupees 3,000 directly into their bank accounts from today. It is initially estimated that nearly 2 crore women will benefit from this scheme. At Nobarnu, the inauguration ceremony will take place at 12:30 p.m. attended by Minister Rugnimitra Paul of the Department of Women, Child Development and Social Welfare. The Chief Minister's program will be connected via video conference to every block and municipality in the state. Immediately after the inauguration, 100 selected Annapurna Yojana beneficiaries in each block and municipality will be handed approval letters. Similarly, 100 beneficiaries in the Kolkata Municipal Corporation area will also receive these letters. Beneficiaries have been given 90 days to register under this scheme. Women aged between 25 and 60 years will be eligible for this benefit. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Ministry of Tribal Affairs will organize the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi today. President Draupadi Murmu will address the inaugural session of the conclave. The event is being held as part of the ongoing Janjatiya Garima Utsav 2026. President Draupadi Murmu will virtually inaugurate the training fab established at the Center for Nanoscience and Engineering at the Indian Institute of Science, Bengaluru. She will also inaugurate 75 space labs established across Eklavya Model Residential Schools in different parts of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the middle class. A report.
7: Over the past 12 years, the government has empowered India's middle class through wide-ranging reforms. Simplified taxation and stronger banking, insurance and pension systems have enhanced their financial security. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are paying zero tax. For the middle class, specifically, GST has delivered several tangible benefits by simplifying taxes and lowering everyday costs. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, launched in 2015, has transformed the lives of crores of people by providing them with secure housing. Out of the total 1 crore 25 lakh sanctioned houses, over 98 lakhs are completed or delivered to beneficiaries across the country so far. Talking to Akashwani News, Abhishek Kumar from Uttar Pradesh said the scheme is ensuring housing for the poor and bringing relief to those living in rented accommodation.
8: My name is Abhishek Kumar. I have been in Pradhan Mantri Awas Yojana for 2 years. After applying, I have been given a lottery draw through the medium of a house. After applying, I have been making the cost of the house. After applying, I have been registering it. कुछ समय में हो जाएगी, उसके बाद मेरे को मकान आवंटित हो जाएगा, रजिस्ट्री कब्जा हो जाएगा। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
7: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज एनेबल्ड 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड्स एक्सपेंडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोटेक्शन व्हाइल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट 50-80% लोअर प्राइसेज थ्रू जन औषधि केंद्रास। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज ब्रह्मदेव ऑफ बिहार सेड दैट द मेडिसिन एट दिस केंद्रास आर अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस देन द मार्केट। मार्केट।
9: मेरा नाम ब्रह्मदेव मालाका, मैं बिहार से हूँ, मधेपुरा जिला से। लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवा मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खोजे, किस सलाह पर हम लोग चलते हैं, बराबर दवा लेते हैं। यही दवा यदि बाहर में लेना चाहते हैं तो महंगी दवा मिले। तो सरकार की एक संस्था है, इससे गरीब की समस्या हल होती है।
7: द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन 2015 हैज आल्सो इवॉल्वड इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। अंडर द स्कीम 40 लाख करोड़ रुपीज ऑफ लोन्स हैव बीन डिसबर्स्ड टू

0: गलती मानने के लिए बहादुर होना पड़ता है और बहस करने के लिए बदतमीज। तो बदतमीज मत बनिए, बहादुर बनिए।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर सही हैं तो आपको अपनी तर्क के द्वारा अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है। अगर आप गलत हैं तो गलती मान लीजिए, उससे आप छोटे नहीं हो जाते हैं बल्कि और आप बड़े हो जाते हैं, यानी आपका मान सम्मान और बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम है आज का ये हमारा नमस्कार उदयपुर। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त शमील
0: और मैं हूँ भगवती लक्षकार। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज क्या होने वाला है हमारे नमस्कार उदयपुर में वो हम बता देते हैं। टुडे डायरी में विश्व साइकिल दिवस पर हम बात करने वाले हैं, स्थानीय खबरें आपको दिखाने बताने वाले हैं, साथ ही साथ प्रेरणा क्षेत्र संवाद होगा उपासना टाकू पर, जो कि फिनटेक क्षेत्र में योगदान उनका जो है उन पर बातचीत होगी, साथ ही साथ फन फैक्ट में हम बात करेंगे साइकिल से जुड़े तथ्य और स्पर्धाओं पर। आज होगा लिसनर्स कनेक्ट,
1: बिल्कुल, जिसमें श्रोताओं के संदेश हमें मिलेंगे।
0: बिल्कुल, और तो शुरू करते हैं एक गीत से,
1: सुनते हैं ये गीत।

0: बिल्कुल, आपको हमारे प्रोग्राम से कितना प्यार है आप ज़रूर बताएं आज लिसनर्स कनेक्ट में। आज हमारे मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर वो है 9462697568।
1: बिल्कुल, इन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप संदेश कर सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में आपको क्या अच्छा लगा है, उस पे आप अपनी राय जो है हमें बता सकते हैं।
0: और आज की अगर हम बात करें तो आज हम मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस। ये 3 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना।
1: बिल्कुल सही बात है, स्वास्थ्य लाभों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को जागरूक करना आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि साइकिल परिवहन का एक ऐसा साधन है जिससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। यह प्रदूषण को कम करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। साथ ही आपको बता दें भगवती कि यह यात्रा का सबसे सस्ता, सुलभ और विश्वसनीय साधन है। स्वास्थ्य के लाभ तो आपको मिलते ही हैं, आपकी फिटनेस जो है वो बनी रहती है, आपका जो वजन है वो नियंत्रित रहता है, आपका जो हृदय है वो भी स्वस्थ रहता है, आपका जो मानसिक तनाव है वो आपसे दूर रहता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो।
0: आज की दुनिया भर में हम देखते हैं तो वायु प्रदूषण, यातायात जाम और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमारे बीच में है और साइकिल इसका जो है ना एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प बनकर उभरा है। और कई देशों और शहरों में साइकिल ट्रैक, सार्वजनिक साइकिल साझा प्रणाली और जागरूकता अभियानों के माध्यम से साइकिल संस्कृति को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवती, हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि इससे आपकी जो मांसपेशी होती हैं उसका भी व्यायाम होता है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो इससे पैरों और शरीर की जितनी भी मांसपेशी हैं वो भी मजबूत होती हैं। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में साइकिल का

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

0: तीर तुमने चलाया, घायल हम हुए।
1: प्यार तुमसे हुआ, पागल हम हुए।
2: बिल्कुल, आप अपने राय प्रोग्राम के बारे में हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।
3: बिल्कुल, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के प्रोग्राम में जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने सुझाव देना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप संदेश कर सकते हैं। भगवती, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात हो रही थी हमारी आज साइकिल की, तो साइकिल से जुड़े कुछ मुख्य हम बात करते हैं फन फैक्ट्स में। और अगर साइकिल की ही बात हो रही है तो साइकिल एक साधारण वाहन तो नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का एक बेहतरीन और पर्यावरण के अनुकूल आविष्कार है।
2: और इसका आविष्कार किया था, आधुनिक साइकिल की शुरुआत हुई थी 1817 में, जर्मनी के बेरन कॉल वॉन ने इसकी जो है आविष्कार किया था। उसे ड्रेसाइन कहा जाता था, और जिसमें पेडल नहीं थे और इसे पैरों से धक्का देकर चलाया जाता था।
3: बिल्कुल, इसका नाम जो बाईसाइकिल है, इस शब्द का जो जन्म हुआ वो 1807 के दशक में फ्रांस में हुआ था। और पहले जो साइकिल थी वो पूरी तरह से लकड़ी से बनाई जाती थी। दुनिया में साइकिल का क्रेज बढ़ता चला गया है। नीदरलैंड को साइकिलों का देश कहा जाता है। यहाँ आबादी से भी ज़्यादा जो हैं वो साइकिलें मौजूद हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर साइकिलें उपयोग की जाती हैं तो वो देश है चीन।
2: और अगर स्कॉटलैंड के लोहार क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ने 1839 में पेडल का आविष्कार किया था, और इसके बाद में 1880 के दशक में इंग्लैंड के हैंस रोनाल्ड ने चेन का आविष्कार किया, जिससे आधुनिक साइकिल की रूपरेखा तैयार हुई। दुनिया भर में हर साल लगभग 10 करोड़ से अधिक साइकिलों का निर्माण होता है, और जैसा कि आपने बताया है कि चीन सबसे आगे हैं और लगभग 50 करोड़ साइकिलें वहाँ मौजूद हैं।
3: बिल्कुल, साइंस और रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो बिना सवार के भी संतुलन बनाया जा सकता है। साइकिल बिना किसी के बैठे भी अपने आप सीधी खड़ी रह सकती है, ये भी अपने आप में गजब बात है। और इसकी कई बार रफ्तार है वो भी हैरान करने वाली भी हो जाती है। साइकिल की गति का विश्व रिकॉर्ड डेनिस मुलर कॉर्नेक के नाम है, जिन्होंने 2018 में एक आश्चर्यजनक रफ्तार हासिल की है।
2: और भारत में शुरुआत की बात करें तो भारत में साइकिल का व्यावसायिक निर्माण हुआ था 1942 में, मुंबई स्थित हिंद साइकिल कंपनी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी।
3: बिल्कुल, स्वास्थ्य और पर्यावरण की बात करें भगवती, तो हम आपको बता दें कि ऊर्जा की बचत होती है साइकिल चलाना। पैदल चलने की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक ऊर्जा कुशल होता है। साथ ही साइकिल चलाने से हर घंटे लगभग 400 से 750 कैलोरी बर्न हो जाती है। साथ ही प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। अगर आप साइकिल द्वारा 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आप कार के मुकाबले लगभग 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत कर लेते हैं।

0: बिल्कुल श्रोताओं, हम मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस। और अगर हम बात करें स्पर्धाओं की, तो विश्व भर में कई स्पर्धाएं होती है, रेसिंग होती है और एडवेंचर स्पर्धाएं भी होती है।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आज साइकिलिंग से जुड़ी प्रतिस्पर्धाओं की, जो कि साइकिलिंग डिसिप्लिन से जुड़ी होती है। अलग अलग ट्रैक पर और वातावरण के अनुसार इन्हें खेला जाता है, जिसमें रोड साइकिलिंग होती है। सबसे आम और बेहद लोकप्रिय प्रकार की ये साइकिलिंग है, जो कि पक्की सड़कों पर आयोजित

0: की जाती है।
1: टूर डी फ्रांस ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन वार्षिक साइकिल रेस है जो फ्रांस की सड़कों पर 21 दिनों तक चलती है।
0: बिल्कुल, रोड रेस टाइम ट्रायल जिसमें राइडर्स अकेले छोटी टीमों में एक निश्चित दूरी को तय करने के समय के साथ सामने वाले खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। रोड रेस होती है जिसमें राइडर्स एक साथ लंबी दूरी जो है तय करते हैं। क्रिटेरियम जिसमें एक बंद शहर की सड़कों पर छोटे सर्किट लैप्स में आयोजित की जाने वाली तेज गति की रेस होती है।
1: ट्रैक साइकिलिंग की भी बात करें तो ये विशेष रूप से निर्मित इंडोर अंडाकार ट्रैक पर खेली जाती है जिसे वेलोड्रोम कहा जाता है। और माउंटेन बाइकिंग की बात करें तो ये उबड़ खाबड़ रास्ते जंगलों और पहाड़ों पर विशेष मजबूत साइकिलों की जाने वाली रोमांचक और जोखिम भरी स्पर्धा है।
0: बिल्कुल, माउंटेन बाइकिंग की अगर बात हो तो ये जो प्रतियोगिता है ये प्राकृतिक और उबड़ खाबड़ रास्तों जंगलों और पहाड़ों पर ऑफ रोड होती है जिसके अंदर सबसे लोकप्रिय माउंटेन बाइक रेस जो कि विभिन्न बाधाओं वाले रास्तों पर होती है। डाउनहिल जिसमें राइडर्स बहुत तेज गति से खड़ी पहाड़ियों से नीचे आते हैं।
1: BMX रेसिंग इसमें छोटे पहियों वाली और बेहद मजबूत साइकिलों का उपयोग किया जाता है और ये रेस के दौरान तीखे मोड़ मिट्टी के टीले और जंप पर होती है।
0: बिल्कुल, साइक्लो क्रॉस प्रतियोगिता की बात करें तो एक ये मिश्रित कंपटीशन है जिसमें पगडंडी घास मिट्टी और बाधाएं पार करनी होती हैं। इन सभी का संयोजन होता है। इस साइकिलिंग के अंदर कई बार पार करने के लिए साइकिल को कंधे पर भी उठाना पड़ता है।

तो श्रोताओं, हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप जरूर हमें बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।

तो श्रोताओं कहीं मत जाइएगा, हम फिर आएंगे 9:10 पर आपसे लिसनर्स कनेक्ट भी करेंगे। तब तक आप हमें आपके विचार हमें भेजिए, हमारे फ़ोन नंबर है 9462697568, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो रहा है समाचारों का।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने

0: वालों का सम्मान किया जाएगा। इससे पहले कल जल स्रोतों का पूजन किया गया, साथ ही इनकी साफ सफाई के काम भी किए गए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कुम्हेर स्थित कच्चा कुंडा पर जल पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पूरे देश में एक मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों की साफ सफाई सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सभी नगर पालिकाओं में लोक कल्याण मेले लगाए जा रहे हैं। इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ने सहित ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए इस मेले में रेहड़ी, ठेला संचालक, फेरी वाले और छोटे व्यापारियों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
1: लोक कल्याण मेले के दौरान पथ विक्रेताओं, रेहड़ी ठेला संचालकों, फेरी वालों, छोटे व्यापारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों

0: की साफ सफाई सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सभी नगर पालिकाओं में लोक कल्याण मेले लगाए जा रहे हैं। इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ने सहित ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए इस मेले में रेहड़ी, ठेला संचालक, फेरी वाले और छोटे व्यापारियों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
1: लोक कल्याण मेले के दौरान पथ विक्रेताओं, रेहड़ी ठेला संचालकों, फेरी वालों, छोटे व्यापारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है। अभियान के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, भुगतान को बढ़ावा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3 चरण में 90,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजना से जोड़कर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। स्वर्ण नगरी में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह नजर आ रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राज्य में अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकार समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कल शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अब सहकारी समितियों का आवंटन भी ऑनलाइन किया जाएगा। श्री कुमावत ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाकर उन्हें अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। राज्य में इन दिनों पुलिस की ओर से बाल मजदूरी के खिलाफ उमंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण बनाना और पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के लिए हर जिले में थानेवार विशेष रेस्क्यू टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति और एनजीओ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह ने कल एक बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को बाल तस्करी और मजदूरों के विरुद्ध जागरूक करने के निर्देश दिए, साथ ही इन कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। आज विश्व साइकिल दिवस है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 3 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य किफायती, बिना ईंधन वाले, पर्यावरण और स्वास्थ्य हितैषी एवं परिवहन के माध्यम साइकिल को लोकप्रिय बनाना है। इस वर्ष की थीम हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना रखी गई है। केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके जरिए साइकिल के उपयोग को लगातार बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर आज अजमेर में साइकिल रैली रखी गई। ये रैली आनासागर चौपाटी में शुरू हुई। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के कई नागरिक नियमित रूप से साइकिल का उपयोग कर स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से कई स्थानों पर कल भी आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रही। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर दिन का पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटों में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हुई। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं माउंट आबू में रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल सभी संभागों में आंधी और बारिश की

0: संभावना व्यक्त की है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आने की आशंका है। बीकानेर, चूरू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत मिली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका नमस्कार उदयपुर में। मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार और मेरे साथ है शमील। एक बार फिर याद दिला दें, आज है लिसनर्स कनेक्ट और आप प्रोग्राम के बारे में आपकी राय हमें भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।

0: चलिए अब बात करते हैं इंस्पिरेशन जोन की, और आज बात होने वाली है उपासना टाकू की। भारत की प्रमुख फिनटेक उद्यमियों में से ये एक है और मोबीक्विक की सह संस्थापक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO है। उन्होंने भारत में डिजिटल भुगतान और मोबाइल वॉलेट सेवाओं के लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भारत के डिजिटल भुगतान उद्योग की एक सफल महिला उद्यमी में आप शामिल हैं। बात करें आपकी, तो आपने अमेरिका में नौकरी की, अपनी मास्टर्स पूरी करने के बाद में सैन डिएगो में आपने ऑटो फाइनेंस में नौकरी की। उसके बाद 2006 में सैन जोस में पेपल के लिए आपने प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम किया। 2008 में आपने भारत वापसी की और डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक बड़ा प्रभाव डालने के मकसद से उन्होंने अपनी शानदार नौकरी छोड़ी और यहाँ आने के बाद में अपने मोबीक्विक की शुरुआत की।
0: और उस समय भारत में डिजिटल भुगतान का बाज़ार जो है बहुत छोटा था। कंपनी ने शुरुआत मोबाइल रिचार्ज और डिजिटल वॉलेट सेवा से की, लेकिन बाद में ये भुगतान, क्रेडिट, बीमा और निवेश सेवाओं के लिए विस्तारित हो गई। उपासना टाकू का संबंध गुजरात से माना जाता है। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियर में स्नातक शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में अमेरिका की प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल
1: बिल्कुल
0: की।
1: बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो भारत में डिजिटल भुगतान की क्रांति लाने वाली अग्रणी महिलाओं में से आपको एक माना जाता है। फोर्ब्स द्वारा आपको वुमेन टू वॉच लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। आपके नेतृत्व में मोबीक्विक ने भारी जो है वो प्रगति की है और कंपनी ने अपना IPO भी 2024 में लॉन्च किया है।
0: और 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भुगतान क्षेत्र में नेतृत्व के लिए इनको सम्मानित किया गया था और 2019 में फोर्ब्स एशियन पावर बिजनेस वुमन सूची में इनको शामिल किया गया। वर्ष 2024 में CNBC जो चैनल है उससे भी उनको वो सम्मान प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी, तो इनकी जो नेतृत्व क्षमता है वो महिलाओं को प्रेरित करती है। तकनीकी क्षेत्र, समावेश और कई तरह की उनकी महिलाओं की भागीदारी को जो है वो मुखर होकर उसका समर्थन करती है और वे अक्सर कहती है कि भारत का फिनटेक क्षेत्र आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों की औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ सकता है। और हाल के वर्षों में उपासना टाकू ने डिजिटल भुगतान, क्रेडिट और वित्तीय समावेशन को लेकर कई मंचों पर भारत के फिनटेक भविष्य पर अपने विचार भी रखे हैं।
1: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: और श्रोताओं, स्थानीय खबरों की अगर हम बात करें तो आज राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मंगलवार को उदयपुर जिले में जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा की पहल पर ये अभियान चल रहा है। इसके साथ ही जो है ये कार्यक्रम अब सम्पन्न होता है।
1: बिल्कुल सही बात है। स्थानीय खबरों की हम बात कर रहे हैं और स्थानीय खबरों की अगर हम बात करें भगवती, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2025 के तहत कल यानी मंगलवार को वैकल्पिक विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई, जिसमें पहली पारी यानी सुबह की पारी में वाणिज्य कॉमर्स और दोपहर की पारी में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र हुए।

0: बात करते हैं अब स्थानीय खबरों में मौसम की कि बारिश जो है थम गई है लेकिन उमस जो है वो बढ़ गई है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा है, वहीं पर न्यूनतम 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, क्योंकि अभी हमने जो है आंधी बारिश का दौर देखा था, बादलों की आवाजाही रही तो चुभन वाली गर्मी से उस वक्त तक कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन अब उमस ने फिर से बेचैन कर दिया है।
1: और पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए देश की प्रतिष्ठित संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से इस वर्ष ग्रीन ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया जा रहा है और राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में अधिकाधिक शामिल होने के निर्देश जारी किए हैं।
0: बिल्कुल भगवती, अगर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र डालें तो कुछ व्हाट्सएप संदेश हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
1: लिसनर्स कनेक्ट,
0: बिल्कुल। तो इसमें जो एक श्रोता है हमारी, उनके बारे में बता दें, उन्होंने लिखा है आज के कार्यक्रम को लेकर कि टेकरी लिंक रोड से, ये हैं किरण कुमावत। इन्होंने नमस्कार करते हुए कहा है कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी नमस्कार उदयपुर में आता है, आज का कार्यक्रम की इन्हें बेहद अच्छा लग रहा है, जो भी जानकारी आप देते हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है, ये इन्होंने लिखा है। और बीच बीच में आप जो गाने सुनाते हैं वो भी हमको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इस बारे में भी इन्होंने लिखा है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि आज आपने साइकिल दिवस के बारे में जो भी जानकारी दी वो इन्हें बहुत ही अच्छी लगी है, साथ ही इन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है।
1: और एक मैसेज मेरे पास है हिरणमगरी सेक्टर 4 से सुशील यादव, रेणु यादव का, ये लिखते हैं कि गुजरे ज़माने में की यादें तो साइकिल से जुड़ी है, पहले कैंची, फिर डंडा, फिर फर्राटे से चलाना, और इसकी 3 स्टेज होती थी। साइकिल चलाना ही तो ड्राइविंग सेंस की प्राथमिक सीढ़ी और शारीरिक व्यायाम का प्राथमिक स्रोत भी था और आज भी है, जिसे चलाकर आज हम इस स्टेज पर हैं। और अफसोस है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में इसका प्रयोग कम हो रहा है, और इसी को विश्व साइकिल दिवस की बधाई भी वे देते हैं। साथ ही साथ अभी एक और जो है संदेश हमें मिला है, ये है विक्रम का, और ये लिखते हैं कि आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी और साइकिल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामना।
0: बिल्कुल, और हम चाहते हैं और भी बातें करना, गीत आपको सुनवाना, लेकिन अब वक्त का इशारा हो गया कार्यक्रम से विदा लेने का, तो हम चलते चलते एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, साथ ही अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। आज मैं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त शमील
1: और मैं भगवती लक्षकर,
0: नमस्कार।

नमस्कार, उदयपुर अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
3: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
3: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
3: जी हाँ, जरूर।

0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट दो कुबड़ वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुँच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी,
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी,
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे?
12: देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ओ, ये तो रीछ की आवाज है।
13: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है।
10: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
12: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
10: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
12: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
12: ओह, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
10: ओह, अब मैं क्या करूँ?
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
10: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।

0: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
1: ये रीछ तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ सांस रोक के, डर रहता हूँ तभी जान बच पाएगी।
0: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
1: बच गए, लगता है रीछ चला गया।
0: रीछ जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीछ तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
0: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
0: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
1: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
0: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।

0: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो, अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
5: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण

0: ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
2: नहीं करने देंगे,
3: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
5: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरमा,
5: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
6: हाँ गौरमा,
7: हाँ गौरमा,
5: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
7: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ,
7: हाँ,
6: हम सब तैयार हैं।
7: किसी भी हाल में जंगल कटने
6: नहीं कटने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
5: ये है जंगल के उपकार,
8: मिट्टी पानी और बयान,
5: मिट्टी पानी और बयान,
8: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: आगे बढ़ो।
7: अरे कहां से?
9: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू,
7: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
5: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम, एक भी पेड़ को हम हाथ

0: लगाने देंगे आज, नहीं लगाने देंगे। बहनों आगे बढ़कर चुप जाओ पेड़ों से।
1: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों में जाकर चलो।
2: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
3: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
1: ठीक है तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों में काटो चलो।
2: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
3: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
2: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
3: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
4: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
2: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग अभी आप सुन रहे थे, ये है आकाशवाणी उदयपुर। लीजिए अब पेश है कुछ बातें कुछ गीत, इस गीत से करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत।

बिल्कुल, ये सच है कि पक्षी केवल प्रकृति का एक सुंदर हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्रता, असीम आकाश और जीवन शक्ति के प्रतीक होते हैं। इनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती, इनके लिए कोई बाधाएं नहीं होती, और पक्षी कभी भी आसमान की असीमित उड़ान, पिंजरे में मिलने वाले सबसे अच्छे सुखों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता दोस्तों, क्योंकि उसे डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर अटूट भरोसा होता है। और यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। और अगर पंछी ऐसा सोचते हैं तो फिर इंसान तो सोच ही सकते हैं, है ना। चलिए, कार्यक्रम का अगला गीत दिल जले फिल्म से आपके लिए है।

श्रोता हूँ, सुबह सुबह जब घर के आंगन के आसपास चिड़ियों की मीठी चहचहट सुनाई दे तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन आज धीरे धीरे ये सुकून गायब हो रहा है। अब पहले जैसी चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती और चिड़ियों ने घरों में आना ही बंद कर दिया है। ऐसा क्या किया कि ये जो सुकून है हमसे लगातार दूर होता जा रहा है? एक तो देखिए, लगातार पेड़ों की संख्या कम हो रही है। घोंसलों के लिए घरों में खुले आंगन, रोशनदान और खाली कोनों का अभाव हो गया है। और साथ ही साथ वातावरण में बढ़ती गर्मी और धूल चिड़ियों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन रही है। चिड़िया जिन छोटे छोटे कीड़ों को अपना भोजन बनाती है वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और मोबाइल टावरों के निकलने वाली जो विकिरण है वो भी इनको सुरक्षित महसूस नहीं कराती है। तो हम क्या करें कि इनकी चहचहट फिर से लौट पाए? छत या बालकनी में मिट्टी के बर्तन में पानी ज़रूर रखें। थोड़ा जो है बाजरा, चावल या दाना जो आपके पास मौजूद हो वो रखें। ऐसी जगह चुनें जहां बिल्ली की गतिविधियां ना हो। और घर के आसपास देसी फूलों के पौधे, झाड़ियाँ और पेड़ लगाने से चिड़ियों के बैठने और रहने की जगह मिलती है। बगीचों में रासायनिक दवाइयों का कम उपयोग करें और साथ ही साथ पूरी जगह को टाइल्स और सीमेंट से ढक देने के बजाय थोड़ी खुली जगह रखें ताकि कई चिड़ियों को खाना ढूंढने में ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। अगर इतनी छोटी छोटी बातों को हम ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से चिड़िया की चहचहट हमारे आसपास फिर से गूंजने लगेगी।

0: कुछ बातें कुछ गीत चल रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार। आप सुन रहे हैं गीतों के साथ कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां। और एक जानकारी ये भी है कि इन दिनों चल रहा है जून का महीना और थोड़े ही दिनों में बारिशें भी आने वाली है। तो ऐसे मौसम में अगर पेड़ लगाए जाए तो ये आपके आसपास और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होता है। और हर जो पेड़ होता है वो केवल हरियाली ही नहीं बल्कि पर्यावरण को संतुलित भी करता है और कमज़ोर होने से भी बचाता है। किसी पेड़ को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा उसकी प्रजाति, तने की मोटाई, पर्यावरणीय महत्व और स्थान पर निर्भर करती है। और नीम, पीपल, बरगद, जामुन, अर्जुन और आम जैसे देसी पेड़ जैव विविधता, छाया और वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका भी निभाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे पेड़ लगाएं जो कि कानूनी रूप से भी सुरक्षित हो, यानी कि उनको काटा ना जा सके। और साथ ही साथ उन पेड़ों से हमें हरियाली और आसपास का जो जल संरक्षण है वो भी हो पाए। चलिए एक गीत सुनते हैं।
1: है बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले
2: और

0: दूसरा,
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
0: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

श्रोताओं, प्रोग्राम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत, और अब बात करते हैं। तो अधिकतर लोगों को लगता है कि प्रदूषण केवल सांसों के ज़रिए शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जबकि इसका असर शरीर के कई अंगों पर पड़ता है। प्रदूषण हमारे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ये कई रूपों में हमारे आसपास मौजूद है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में होने वाली लगभग 24% मौतें पर्यावरणीय कारणों से जुड़ी होती है। तो क्यों ना हम पर्यावरण को ही सुधार दें। अब बॉर्डर फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

दोस्तों, प्रदूषित हवा लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा और ब्रोकोइटिस क्रॉनिक जो ये बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ फेफड़ों में कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण फेफड़ों के साथ साथ हृदय को भी नुकसान पहुंचाता है। हवा के सूक्ष्म कण रक्त प्रवाह में पहुंचकर सृजन, उच्च रक्तचाप और हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं। सीवेज, औद्योगिक कचरे और रसायनों से जल स्रोत जब प्रदूषित होते हैं, तो ऐसा पानी पीने या उपयोग करने से जो है डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और प्रदूषित जो है प्रदूषण न केवल आपके शारीरिक बल्कि मन को भी असर करता है, और प्रदूषित अव्यवस्थित वातावरण मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, और बच्चों पर भी प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जितना हो सके प्रदूषण से बचिए और पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए।

तो श्रोताओं, 5 जून आ रहा है, यानी कि पर्यावरण दिवस आ रहा है, और हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, है ना? ये सवाल सबके जहन में ज़रूर आता होगा, और जब सुनते हैं कुछ प्रण करते हैं, और बहुत कम लोग सचमुच मददगार साबित हो पाते हैं। पेड़ लगाना, पानी का कम इस्तेमाल करना, बिजली की खपत को कम करना, और प्लास्टिक या अन्य कचरे को कम करने की पहल करना, ये बुनियादी आह्वान है जिन्हें हम बार बार इसलिए भी दोहराते हैं कि ये सब मिलकर करें तो कोई बड़ा परिवर्तन शायद हो। इसी उम्मीद के साथ अब कुछ बातें कुछ गीत से दीजिए अनुमति आपके दोस्त भगवती लक्षकार को। नमस्कार, और आप लीजिए इस गीत का आनंद।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा। मुल्तान खान और पार्टी को अभी आपने सुना, आइए आप सुनते हैं शिल्पी माथुर को।

शिल्पी माथुर और साथियों को अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा। आइए अब सुनते हैं ईश्वर माथुर को।

राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

जगजीत सिंह को आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं उन्हीं की गाई ये अगली गजल पेशे नजर है।

मिलकर जुदा हुए तो रोया करेंगे हम। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को अभी आपने सुना इस गज़ल में, आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये अगली गज़ल।

0: ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
0: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुगम संगीत अभी आपने सुना, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे है पुराने नोट को?

इस मुलाकात का तो बस मज़ा लीजिए। जाने मन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और हेमलता की। आइए अब हम सुनते हैं लता मंगेशकर को।

0: बहारों के सपने। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर की।
1: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
2: सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें।
3: बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें।
1: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
2: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फूल वाला, खिचड़ी वाला, बैंड वाला, ये लो भाई।
6: बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे।
5: अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा।
6: कैसे?
5: मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं।
6: अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं।

अखियों के झरोके से इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ हेमलता की थी। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म एक दूजे के लिए से।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

हीरा पन्ना, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आइए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनते हैं अगले गीत में भी, फिल्म प्रेम बंधन में।

मैं तेरे प्यार में पागल। प्रेम बंधन का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को फिल्म ब्रह्मचारी में।

ब्रह्मचारी, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। दोपहर के ठीक 1 बज रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग से 21 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर 10 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाते हुए दमकल कर्मियों के भी झुलसने के समाचार हैं। ताजा जानकारी मिलने तक लगभग 40 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

0: और सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के टिहरी इलाके में कल एक हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 बच्चा घायल हो गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दुर्घटना एक निजी वाहन के बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर जाने से हुई। कार में सवार शेष 4 लोग लापता हैं। इनकी तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी लोग जैसलमेर जिले के दरियानाथ बावड़ी के रहने वाले थे और हरिद्वार की ओर जा रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास के लिए आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की कि अभी भी कुछ जनजातीय वर्गों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान देश भर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल को नियमित आदत बनाने से संतुलित और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पर्यावरण स्थिरता और स्वच्छ परिवहन को भी समर्थन मिलता है। इस बीच विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैलियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई साइकिल रैली विश्व प्रसिद्ध शांति पार्क में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान पौधे रोपकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। देश की पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में होने जा रही है। ये चैंपियनशिप 8 जून तक आयोजित की जाएगी। इसमें अमेरिका से भी योगा एथलीट का दल शामिल होगा। अमरीकी योगा एसोसिएशन और USISF के संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यीय अमरीकी दल का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जनअभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। दोपहर के 1:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

0: सुकून की ठंडक, शाम होते ही हवा में घुल जाती है महक। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल ऐसा ही मौसम है। जब हम दोपहर में निकल रहे हैं तो देखिए कितनी गर्म हवा चल रही है और मीठे मीठे आम पेय पदार्थों का हम सेवन कर रहे हैं, ठंडे ठंडे जल का हम सेवन कर रहे हैं। और जहाँ पेड़ मिल जाए तो वहाँ तो बात ही कुछ और मिल जाती है। अगर आप कहीं रस्ते में जा रहे हैं तो खुद को भी छाया चाहिए और हमारी जो गाड़ी है, व्हीकल है, उसको भी छाया चाहिए। और शाम होते ही हमारा मन फिर से क्या हो जाता है, घूमने फिरने निकलने का हो जाता है। तो इन्हीं प्यारी सी पंक्तियों के साथ आज हम हमारे महिला जगत कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी पुष्पा व्यास और मेरे साथ हैं
1: अर्चना आचार्य। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।
0: बिल्कुल अर्चना, ऐसा ही है ना मौसम?
1: जी बिल्कुल पुष्पा, क्योंकि जो अभी गर्मी का मौसम तो है लेकिन साथ ही जो पेय पदार्थ है उनसे भी हमारा आनंद बढ़ता जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना हम कार्यक्रम की शुरुआत एक मनोरंजन से करें, प्यार भरे गीत से।
0: बिल्कुल, जब ऐसी दोपहर होती है, जेठ की दोपहर, जब वहाँ अगर नंगे पांव अगर यूँ सोचो कहीं एक दो कपड़े छत पर लेकर नहीं जाना पड़े ना, तो लगता है अब क्यों जाना पड़ रहा है। तो ऐसा ही एक प्यारा सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं कि जेठ की दोपहर में देखो क्या होता है।

0: बहुत ही प्यारा सा नगमा अभी हमने सुना, कुली नंबर 1 मूवी थी। देखिए, जेठ की दोपहर होती है, वो पांव जलते हैं, शरीर भी जलने लग जाता है, गर्मी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं है ना। और पिछले कुछ वर्षों में हम सभी महसूस कर रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है अर्चना, और हम देख रहे हैं कि तापमान के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गर्म हवाएं अधिक तीव्र हो रही है और गर्मी का मौसम पहले की तुलना में अधिक लंबा होता जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बढ़ती गर्मी और बदलती जीवन शैली पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
1: जी हाँ, बिल्कुल पुष्पा, बढ़ती गर्मी और बदलती जीवन शैली के बीच सीधा संबंध है जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि तापमान और लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इससे बचने के लिए हमें खान पान और दैनिक दिनचर्या में मौसम के अनुकूल बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और पाचन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्चना, हम देख रहे हैं कि मौसम का बदलाव जलवायु परिवर्तन पर एक गंभीर संकेत है। बढ़ती गर्मी के पीछे कई कारण भी हैं, जैसे तेजी से हो रही वनों की कटाई है, बढ़ता प्रदूषण है, औद्योगिकरण है, और यहाँ तक कि तेज जो जीवाश्म ईंधों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है जिससे वैश्विक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब ये तापमान बढ़ता जा रहा है तो हमारी जीवन शैली पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, और शरीर का तापमान बढ़ने से मुख्य रूप से हीट स्ट्रोक, हीट एक्सर्शन और डिहाइड्रेशन जैसे गंभीर बीमारियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ तक कि मल्टी ऑर्गन फेलियर और मस्तिष्क को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप अपने खान पान और पोषण डिहाइड्रेशन का भी दिन में, मतलब कहते हैं ना, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हों।
0: बिल्कुल सही कहा। साथ ही जो भी हम कपड़ों का चयन कर रहे हैं वो भी सूती कपड़े हों, कुछ ऐसे कूल जो हमको ठंडक पहुंचाए ऐसे कपड़े हों, है ना, लाइट कलर के कपड़े हों, इनको आप पहनें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम बढ़ती गर्मी की बात कर रहे हैं और बदलती जीवन शैली, तो बदलती जीवन शैली में भी हम क्या कर रहे हैं, आज के समय में हम देख रहे हैं कि पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हम हो गए। एयर कंडीशन का हम प्रयोग कर रहे हैं, निजी वाहन का हम अपना प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऊर्जा की बढ़ती खपत ने जीवन को आसान तो बनाया है लेकिन पर्यावरण पर भी इसका दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हम प्रकृति से भी दूर होते जा रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पहले से कहीं अधिक कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट दिखाई हमको पड़ रहा है। देखिए, थोड़ी से पहले इतनी लू नहीं लगती थी लेकिन अब बाहर निकलते हैं तो जल्दी लू लग जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, थकान हो जाती है, सिर दर्द जैसी गंभीर बीमारियां एकदम हो जाती है, और यहाँ तक कि हृदय संबंधी जटिलता भी इस मौसम में अधिक देखने को मिल जाती है।
1: जी हाँ, और इसीलिए कहते हैं कि ठंडे पदार्थ तासीर वाले जो होते हैं ना, उसे अपने आहार में लीजिए। जैसे अभी आपने देखा होगा बाजार में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और दही, इन चीज़ों को आप शामिल करें जब भी बाहर जाएं। तो जैसे कि अगर आप कुछ खाना पसंद नहीं कर रहे हैं

0: तो आप जैसे छाछ बना करके पी के जा सकते हैं, कैरी की छाछ बना के पी सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो मतलब ऐसे तरल पदार्थ होते हैं ना, उनका सेवन ज्यादा करें।
1: बिल्कुल सही कहा, केरी का पानी है, नींबू का पानी है, शिकंजी है, इनका आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और खाने में भी कुछ ऐसे पदार्थों को आप सेवन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे बिल्कुल हल्का पतला दलिया बना लिया, खिचड़ी बनाई, इसका प्रयोग आप करेंगे तो ज्यादा अपना हम स्वस्थ रहेंगे। ये देखिए मोटे अनाज होते हैं जो कि हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा हमको प्रदान करते हैं और ये जो पचने में भी है ना सहायक होते हैं। इसलिए जब भी देखिए कोई भी मरीज होता है, कोई भी पेशेंट होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहते हैं पतला खाना दीजिए, दलिया दीजिए, मूंग की दाल की खिचड़ी दीजिए। और जहाँ तक हम बच्चे बुजुर्गों की बात करें तो जो ये इन लोगों को ज़्यादा एकदम प्रभावित हो जाती है गर्मी, तो इनका तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। अगर हम मौसम के संबंधित अगर बात करते हैं तो कृषि, जल संसाधन और जैव विविधता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यानी गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है ना कि हमारी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इस स्थिति में हमें अपनी जीवन शैली में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने अभी खान पान के लिए बता दिया, आपको वस्त्रों का चयन कैसे करना है उसके लिए बता दिया, लेकिन हमें भी कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी जीवन शैली में हम कुछ ऐसे परिवर्तन करें, जैसे कि ऊर्जा की हम बचत करें, अनावश्यक बिजली उपकरणों का उपयोग कम से कम करें हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आने वाले भविष्य के लिए हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। साथ ही गर्मी का मौसम में पर्याप्त पानी पिएं, हल्का भोजन करें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
0: जी हाँ, इन बातों पे मुझे एक पंक्ति याद आ रही है। सूर्य का प्रचंड रूप अंबर से बरसती है जब आग सी ज्वाला, अंबर से बरसती है जब आग सी ज्वाला, धरा भी मांगती है बूंद बूंद का निवाला, चिल चिलाती धूप लू के थपेड़े है बताते, प्रकृति भी अपने रंग है नए दिखाते।
1: बिल्कुल सही कहा अर्चना, ये प्रकृति हमें बता रही है, संकेत कर रही है कि भविष्य के लिए कि हमें हमारी प्रकृति को बचाना है। प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है जब हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। यदि हम आज सचेत होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण दे सकेंगे। तो ये तो हमने बात कर रहे थे जीवन शैली में कैसे बदलाव लाए, तो कुछ ऐसे बदलाव जो कि हम पर्यावरण के प्रति सजग रह के करें, कुछ हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाएं, कुछ हम खान पान में लेकर आएं, तो ये तो बात कर रहे हैं हम इसके ऊपर। और पर्यावरण संरक्षण में हम अपना कदम उठाएंगे, ये तो यही कहते हैं कि हम केवल स्वास्थ्य की रक्षा ही नहीं करेंगे बल्कि पृथ्वी को भी सुरक्षित और रहने योग्य बना सकते हैं। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, धरती माँ का मान बढ़ाओ, स्वस्थ रहो और स्वच्छ बनाओ, आने वाला कल सुंदर बनाओ। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ में हम फिर से लेकर चलते हैं गीत मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, फिर करेंगे और बातें।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहुत ही प्यारा सा नगमा अभी हमने सुना, प्यार बांटते चलो। जी हाँ, प्यार हमें बांटते हुए चलना है। देखिए, जहाँ तक प्यार बांटेंगे ना तो बहुत सारी खुशियाँ हमारे पास अपने आप चलकर आती रहती है। और ऐसे ही कुछ प्रयास किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, तो कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे देखिए पहचान में आएगा हमारा विषय क्या है। अर्चना जरा आप बताना, संगठन में

0: लगती है आत्मनिर्भरता में सम्मान है, महिला स्वयं सहायता समूह की सफलता नए भारत की पहचान है। बताइए क्या विषय है हमारा?
1: जी हाँ, क्योंकि विषय है महिला स्वयं सहायता समूहों की सफलता।
0: बिल्कुल,
1: और ये बहुत विशेष कहते हैं ना, मतलब टॉपिक है ये पुष्पा। जब हम लोग हर टॉपिक को ऐसे नॉर्मली ले लेते हैं कि हाँ क्या है, महिलाओं का ही तो है, लेकिन ये वो टॉपिक है जो हम महिलाओं को पता होना चाहिए कि हमारी सफलता किससे जुड़ी है और किस तरह से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्चना। महिला स्वयं सहायता समूह जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इन समूह ने लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर 10 से 20 महिलाओं का एक छोटा समूह होता है जो नियमित रूप से बचत करती है और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को ऋण भी प्रदान करती है। और इस व्यवस्था से महिलाओं में बचत की आदत विकसित होती है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती है।
1: जी हाँ, और स्वयं सहायता समूहों की सफलता के मुख्य कारण सामूहिक शक्ति और आत्मविश्वास। 10-20 महिलाओं को समूह में एक दूसरे के समर्थन करते हैं, जिससे महिलाओं को सामाजिक दायरा बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है।
0: बिल्कुल,
1: और आत्मनिर्भर होने का कहते हैं ना सबसे जरूरी है। और समूह की बचत चक्रीय निधि यानी कहते हैं रिवॉल्विंग फंड से महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि सिलाई, कृषि, पशुपालन, अचार पापड़ आदि का निर्माण शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा श्रोताओं। पहले कई महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। बहुत सारी महिलाएं डेयरी व्यवसाय चला रही है, कोई मसाले बना रही है घर पे, है ना, पापड़ बनाती है, अचार बनाती है, या हस्तशिल्प है उत्पादन उससे कर रही है, तो कोई सिलाई कढ़ाई के माध्यम से आय अर्जित कर रही है। यानी कि कुछ न कुछ वो प्रयास कर रही है जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और उनमें आत्मविश्वास भी बहुत सारा बढ़ा है। इन समूहों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है, जो कि बहुत बड़ा विषय रहा है कि निर्णय स्वयं ले। परिवार के छोटे बड़े निर्णय पहले महिलाएं नहीं ले पाती थी, लेकिन जब से ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ती है तो देखिए उनके पास में जब आर्थिक रूप से पैसा है हाथ में, तो वह कुछ न कुछ कार्य आगे से आगे और ज्यादा बढ़ा सकती है और निर्णय आसानी से ले सकती है।
1: जी हाँ, जब हम कोई कार्य करते हैं ना पुष्पा, तो मन लगाकर शुरुआत करते हैं और अगर हम पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जरूर आगे बढ़ता ही है। तो अगर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो इस तरह से कड़ी जुड़ती है और अपने विचार और यहाँ तक कि अपने हाथ का हुनर बाहर निकल के आता है।
0: बिल्कुल सही कहा। देखिए सारी महिलाएं शिक्षित हो, सब जने नौकरी ही करने जाए, यह जरूरी नहीं है। कुछ घरेलू उत्पादन करके वो अपना आय अर्जित कर सकती है और ये ऐसे कार्य जो हर महिला देखिए कर सकती है। इसके लिए ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना ही आवश्यक है। कुछ महिलाएं होती है भैया आप 12th तक पास हैं, आगे नहीं पढ़ पाई हैं, तो छोटे बड़े उद्योग आप कर सकती हैं। आजकल तो देखिए ऑनलाइन आप काम इसमें आसानी से आगे बढ़ सकती हैं और अपने प्लेटफॉर्म को एक बहुत ज़्यादा बड़ा रूप दे सकती है ना। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आज इंटरनेट का माध्यम आ गया है, यानी इस तरह डिजिटल युग जो आ गया है जिससे महिलाएं आज एक ही जगह कैद नहीं रही है, अपने वर्चस्व को उसने सब जगह फैलाया है।
1: ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पुष्पा, क्योंकि जो काम हम मतलब घर पे कर रहे हैं वो आप बैठे बैठे ही आप दूसरों तक पहुंचा रहे हो।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जरूरी नहीं है कि बाहर जाके ही काम हो सकता है, आप अपने घर पे अपनी सुविधा अनुसार सारा कार्य कर सकते हैं। बस जरूरत है तो थोड़ा सा आत्मनिर्भर होने की और कोशिश करने की। हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं।
0: ओ अर्चना, एक खास बात है, अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो देखिए समय की बचत होगी। देखिए कहीं आप जाते हैं नौकरी करने तो देखिए कहीं ना कहीं आपको तालमेल बिठाना पड़ता है, लेकिन घर में आपने समय 3 घंटे निकाल लिए, आपने कोई भी अपना कुटीर उद्योग शुरू कर दिया तो उसको आप अपना एक नया प्लेटफॉर्म आप दे सकती हैं। अपने घर परिवार में भी अपना सब साथ निभा सकते हैं कि भाई बच्चों का परिवार में देख रेख हो गई, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो गई, सामाजिक कर्तव्य भी देखिए महिलाओं को निभाने पड़ते हैं, सामाजिक कार्यों में जाना पड़ता है, तो वो भी आप कर सकती है एडजस्ट। कुछ काम ऐसे हैं कि भाई हम रात को भी कर सकते हैं, सिलाई का जैसे कुछ काम है तो वो रात के समय में भी कर सकती है। सुबह में आप कहीं चले गए तो रात के समय में कुछ भी 2-3 चीज आपने सिल ली तो आपके एक अर्निंग पॉइंट आपके पास में बना हुआ रहता है। आज महिलाएं परिवार, समाज और ग्राम विकास के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा रही है और वे शिक्षा, शिक्षा

0: स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर भी जागरूकता फैला रही है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति भी वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। भारत में कई राज्यों में स्वयं सहायता समूह ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। इन समूहों की बदौलत अनेक परिवार गरीबी से बाहर भी निकले हैं और महिलाओं को सम्मानजनक पहचान भी मिली है। खास बात, सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी इन समूह को प्रशिक्षण और ऋण प्रदान किया जाता है।
1: जी हाँ, और स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य इन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना है और एक दूसरे की मदद करके उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। महिला स्वयं सहायता समूह एक महिलाओं की सशक्त सामाजिक और आर्थिक को बढ़ावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये हमारी महिलाओं को ध्यान में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस जो हमारी ये जीवन शैली है उसमें हम आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें खुद को भी सुकून मिले और हम अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल सकें।
0: बिल्कुल सही कहा। महिला स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक उन्नति का माध्यम नहीं बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन की एक सशक्त ताकत भी है। इसकी सफलता यह संदेश देती है कि महिलाएं संगठित होकर कार्य करती है तो वे अपने साथ साथ पूरे समाज के विकास का भी मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। जी हाँ, महिलाएं वह हैं जो कि नारी है और नारी वह है, मैं हर चीज़ संभाल लेती हूँ, हर मुश्किल से खुद को उबार लेती हूँ, नहीं मिलता वक्त मुझे खुद के कामों से, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी के लिए अपना वक्त निकाल लेती हूँ, अपना वक्त निकाल लेती हूँ। ऐसे ही हमारी महिलाएँ देखिए कार्य कर रही है और स्वयं सहायता समूह की सफलता अपने पायदान छू रही है। फिर से लेके संगीत की दुनिया में,
1: बिल्कुल पुष्पा।

0: दो पहियों की प्यारी सवारी सबको लगती बड़ी न्यारी, धीरे धीरे राह दिखाती मंजिल तक हमको पहुंचाती। न धुआं न शोर मचाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, गांव शहर की ओर दिखाई दे, साइकिल ने अपनी दाग जमाई। बताओ क्या है वो अर्चना?
1: जी हाँ बिल्कुल, मुझे समझ आ गया है, वो है साइकिल।
0: और आज हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व साइकिल दिवस जो है।
1: जी हाँ बिल्कुल, विश्व साइकिल दिवस बुधवार 3 जून और आज है जो हम मतलब जिसका उद्देश्य साइकिल के परिवहन के एक सरल किफायती और स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में महत्व उजागर करता है। पुष्पा
0: बिल्कुल सही कहा, विश्व साइकिल दिवस यह कहता है सादा जीवन सबसे बेहतर रहता है, आओ मिलकर इसे अपनाएं, स्वच्छ और हरित जग बनाएं। विश्व साइकिल दिवस जो हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य साइकिल के महत्व को बढ़ावा देना है, लोगों को इसके उपयोग के प्रति जागरूक करना है। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें हम तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने साइकिल को एक सरल, सस्ती और स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में मान्यता दी। इसके बाद से हर वर्ष 3 जून को विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है। साइकिल ने न केवल यात्रा को एक किफायती साधन बनाया बल्कि यह स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, और पहली बात पुष्पा, विश्व साइकिल दिवस क्या है? विश्व साइकिल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया एक वैश्विक दिवस है जो साइकिल को परिवहन के एक विश्वसनीय, किफ़ायती, स्वच्छ और टिकाऊ साधन के रूप में मान्यता देता है। यह दिन स्वास्थ्य में सुधार, प्रदूषण कम करने और आवागमन में सुगम बनाने और समुदायों को जोड़ने में साइकिल की भूमिका जश्न मनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा कि देखिए पर्यावरण प्रदूषण कम होगा क्योंकि साइकिल देखिए पेट्रोल लेती नहीं है, और आज अभी हम देख रहे हैं पेट्रोल की कितनी किल्लत हो रही है ना, कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो छोटे बड़े काम हम साइकिल से जाकर करें, इस दिवस का उद्देश्य यही है, तो हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहेंगे। देखिए बिल्कुल साइकिल को हम भूल जाएं ऐसा नहीं होने दें, साइकिल के महत्व को हम समझें क्योंकि नियमित साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय मजबूत रहता है और प्रदूषण भी कम होता है, जो कि हमारे पर्यावरण संरक्षण में हम अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और विश्व साइकिल दिवस 2026 की थीम की अगर हम बात करें तो वह है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। जी हाँ, आज दुनिया पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ रही

0: यह साइकिल का ही महत्व है और इसको और हमको बढ़ाना है।
1: जी हाँ, और जैसे कि आपने बताया, हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना, यह विषय इस बात पर केंद्रित है कि साइकिल चलाना किस प्रकार प्रदूषण को कम करने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाने के लिए टिकाऊ है, क्योंकि शहरों का समर्थन करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण में बदलता है ये, और ये मदद भी करता है। जैसे कि आपने देखा होगा पुष्पा, हमारे यहाँ पर उदयपुर में भी मतलब साइकिल का चलन बहुत चलने लगा है, और अभी जैसे गर्मियां हैं तो मॉर्निंग में लोग फतेह सागर पे आपने देखा होगा कितना अच्छा एंजॉय कर रहे, चला रहे हैं साथ में।
0: बिल्कुल, हमारी साइकिलिंग का संस्कृति का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके विषय पर भी हम अभी थोड़ी देर में ही बात करेंगे। देखिए, साइकिल है जो कि ईंधन की बचत करती है, कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और हमें सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और साइकिल चलाने के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, वजन नियंत्रण रहता है, कैलोरी आपकी बर्न होती है, फैट कम होता है। जो भी मोटापे से परेशान हैं उनके लिए साइकिल चलाना अत्यंत आवश्यक है। हृदय के लिए उत्तम है क्योंकि रक्त संचार बेहतर रहता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम होता है। मजबूत मांसपेशियां और जोड़ होते हैं क्योंकि यह पैरों कुल्हों की मजबूती के साथ घुटनों के लिए भी अच्छा व्यायाम है।
1: जी हाँ, ये तो हमने बता दी पुष्पा, बहुत सी बातें हैं, तो क्यों ना बहनों को एक प्यारा सा मधुर सा गीत सुना दिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, साइकिल जो कि उदयपुर में काफ़ी मशहूर हो चुकी है, साइकिलिंग का ट्रेंड जो बढ़ चुका है, तो लोगों के पास हमेशा साइकिल देखने को मिलती ही रहती है जो कि काफ़ी एडवांस होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन को अच्छा सा बनाइए। साइकिल भी अनेक प्रकार की है जो कि आप जैसी साइकिल चाहे वैसी लीजिए और उसे चलाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। आज के कार्यक्रम में मैं थी पुष्पा व्यास और
1: अर्चना आचार्य का स्वीकार करिए प्यार भरा नमस्कार।

0: महिला जगत, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ही उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: अरे, अरे,

सीता और गीता इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। ये अब सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: इतना तो याद है मुझे,
1: इतना तो याद है मुझे।
2: महबूब की मेहंदी, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए अब सुनते हैं मेरा सारा फिल्म का ये गीत, आवाज आशा भोसले की।

झुमका गिरा रे। आइए फिल्म संगीत में आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आंधी फिल्म के इस गीत में।

ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं आइए अब हम आपको जानकारी दे दें विकास चर्चा कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री गोपाला योजना पर।

इस सुविधा जिससे लागत कम और दूध उत्पादन बढ़े उस पर ध्यान दिया जा सके। पशु चिकित्सा में आयुर्वेदिक और एथनोवेटरी पारंपरिक दवाओं के माध्यम से 29 आम बीमारियों के इलाज और वीडियो की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अलर्ट सिस्टम है जिसमें पशुओं के टीकाकरण, गर्भाधान जांच और बच्चे देने के समय पर अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं आप।

भारत सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएमई गोपाला है। यह पशुओं के नस्ल सुधार, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सीधे किसानों के मोबाइल पर उपलब्ध कराता है, ताकि पशुपालन को अधिक लाभदायक बना सकें।

गोपाला ऐप की मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें नस्ल सुधार है, जिसमें अच्छी नस्ल का खरीद व बिक्री करने में बहुत मदद मिलती है। संतुलित आहार में स्थानीय रूप से उपलब्ध चारे का सटीक अनुपात जानने

इस ऐप को आप स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर गोपाला ऐप डाउनलोड करें। यह ऐप हिंदी सहित 12 भाषाओं में उपलब्ध है।

इसमें पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाएं भी चल रही हैं, जो पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

0: ये थी जानकारी विकास चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गोपाला योजना पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को है। लीजिए अब सुनिए हिंदी में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
2: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन

0: में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम नंदू भाई, राम राम।
1: राम राम भावना भाई सर, राम राम।
0: और कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला हंगला किसान भाई ने भी अपनो राम राम, राम, राम सा। देखो नंदू भाई कार्यक्रम रो टेम भी हो और आप ही बहुत बहुत ही जानकारी लेन और लारे लारे मन भवन राजस्थानी लोकगीत सुनावारे वास्ते आपने कार्यक्रम में आई यहाँ सा।
1: बिल्कुल आप ठीक रहा हो कि देखो अणी कार्यक्रम में आप आवा तो अपने किसान भाई बहना वास्ते बहुत बहुत जानकारी लावा सा। और आज जटे किसान री बात में अपनी बात करा कि देखो पशु टीकाकरण अपनी करावा तो हाँ। कई कई लाभ आपने वेवेसा।
0: सही बात है। देखो सर जटे खेती बाड़ी रे साथ साथ आपकी बात करा पशुपालन री तो भारत री ग्रामीण अर्थव्यवस्था रो एक महत्वपूर्ण आधार है।
1: बिल्कुल।
0: गाय भैंस बकरी भेड़ सुअर और मुर्गी जैसा पशु किसाना ने दूध मांस अंडा ऊन और दूसरा अन्य उत्पाद प्रदान करे। पशु अच्छे स्वास्थ्य बना पशुपालन अधिक लाभ प्राप्त नहीं की दो जय सके।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देखो पशुओं में विभिन्न प्रकार का जी संक्रामक रोग है।
0: हाँ हाँ।
1: बचावा वास्ते आप ही टेम टेम पे कहिए कि टीकाकरण करावा यो अपने वास्ते बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
0: सही बात है।
1: और टीकाकरण की जटे बात वेरी है तो टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जण्यू में कहिए कि पशु रे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित भी जावे।
0: हाँ हाँ।
1: और जण्यू कहिए कि वो विशेष जो भी रोग है वण्यू वो सुरक्षित रहे सा।
0: सही बात है।
1: और पशु टीकाकरण नहीं केवल पशुओं रे स्वास्थ्य की रक्षा करे सा बल्कि किसानारी आय बढ़ावा में पशुओं ने सुरक्षित रखवा में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बतावे सा।
0: सही बात है। देखो सा नंदू भाई जटे पशु

0: टीकाकरण रे लाभ री बात करे हाँ तो सबों पहली जटे आप ही अबार जिक्र की दो कि संक्रामक रोगों सुरक्षा मिले तो देखो सा सबों पहली बात करा पशु टीकाकरण रो सबों बड़ो लाभ यो है कि पशुआ में जो अलग अलग तरह रा संक्रामक रोग है वणी भी बची सके। खुरपका मुंहपका गलगोटू ब्लैक कार्टर ब्रुसोलेस पीपीआर एंथ्रेक्स जैसी कई गंभीर बीमारियां जो है अपने पशुआ ने प्रभावित करे और ये रोग जो है तेजी फैले और कई बार पशुआ की मृत्यु रो कारण भी बन जावे और समय रहता अगर आप टीकाकरण करावंगा तो अड़ा रोगों और रोकथाम संभव हो सके और अपना पशु स्वस्थ रहेगा सा।
1: बिल्कुल भावना भाई साहब आप ठीक ही रहा हो। देखो टीकाकरण पशुओं की मृत्यु दर ने भी कम करवा में मदद करे सा। क्योंकि आप जाना है कि अनेक संक्रामक रोगों के कारण हर वर्ष जो है बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु भी जावे और यदि पशुओं के निर्धारित टाइम पे टीका लगा दिया जावे तो रोगा रो प्रभाव बिल्कुल नहीं वेगा या बहुत ही कम वे जाएगा और पशुवारी आपकी जान बचे सकांगा।
0: सही बात है। देखो साने कई वेगा कि पशु पालका ने आर्थिक नुकसानों भी बचाओ मलेगा।
1: बिल्कुल
0: और आते आते बात करा दूध उत्पादन में वृद्धि री तो देखो सा स्वस्थ पशु जो है अधिक दूध उत्पादन करे और अंडे विपरीत अगर कोई पशु बीमारियों ग्रसित वे रो है तो वो दूध उत्पादन धीरे धीरे कम वे जावे। टीकाकरण पशु स्वस्थ रहे और वनारी उत्पादन क्षमता भी वणी रेवे। डेयरी व्यवसाय जुड़िया लगा जो किसान है वनारे वास्ते यो अत्यंत लाभकारी है क्योंकि आप ही जाना कि अधिक दूध उत्पादन वनारी आय बढ़ेगा सा।
1: बिल्कुल भावना वैसा आप ठीक ही रिया आप ही जटे जाना कि देखो पशुआरा बीमार वेवा पर देखो आपने उपचार में खर्चो करना पड़ेगा। वनारी दवाइयां है देखभाल है वंडे वास्ते आपने अतिरिक्त पयो जो है खर्च करना पड़ेगा और कई दान कई वे गंभीर रोग रे कारण कही है कि पशु की मृत्यु भी विजावे तो वणियो कही है कि आपने बड़ो आर्थिक नुकसान वे जावे सा।
0: सही बात है।
1: और टीकाकरण री लागत बहुत ही कम वेवे जबकि अने वेवा वालो लाभ आपने बहुत ही ज्यादा वेवे। तो आपनो आपने किसान भाई बहन ने यो कहना है कि अणी बात इस टीकाकरण जो है आपने एक अशुभ प्रक्रिया है जो आपने वाते निवेश जो है लाभदायक के रूप में मान्यो जावे सा।
0: सही बात है। देखो सा नंदू भाई हाथे ते बात करा कि रोग रे प्रसार पर नियंत्रण री
1: बिल्कुल
0: तो संक्रामक रोग एक पशु दूसरे पशु में तेजी फैल सके और अगर कड़ी क्षेत्र में अधिकांश पशुओं ने टीकाकरण कीधो गयो है तो रोग फैलवा री संभावना भी बहुत कम वे जावे और अन्य प्रकार आप कह सका कि टीकाकरण सामूहिक सुरक्षा प्रदान करे और पूरा पशुधन ने रोगों बचावा सहायक व्यवसाय।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देखो पशु टीकाकरण रा आपने बहुत सारा लाभ है। और अना लाभारी बात तो अभी और भी अनी कार्यक्रम में करांगा और बच्चे देखो एक राजस्थानी लोक गीत आपने किसान भाई बहन ने सुनाई दसा।
0: हाँ तो सुनायो एक राजस्थानी लोक भजन।

0: हाँ तो नंदू भाई, यो तो सुनियो मन भावन राजस्थानी भजन। और देखो सा कार्यक्रम रो आगे विस्तार करा। और जेटे बात करे हा पशु टीकाकरण रे लाभ री, तो देखो सा अण्यू कही है कि आपने जो प्रजनन क्षमता जो पशुवारी है वन में भी सुधार वेगा। कई रोग पशुवारी प्रजनन क्षमता ने प्रभावित करे। कुछ बीमारियां रे कारण गर्भपात, बांझपन या कमजोर संताना रो जन्म वे सके। अण्यू कही है कि टीकाकरण अणी समस्या ने रोकवा में मदद करे और पशुवारी प्रजनन क्षमता ने सुरक्षित राखे। अणु पशुधन की संख्या और गुणवत्ता दोया में वृद्धि वेवेसा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देखो टीकाकरण बहुत तरह का फायदा है।
0: हाँ हाँ।
1: एक फायदा यो भी है कि देखो अणु कही है कि पशुवारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि वेगा।
0: हाँ हाँ।
1: आप ही देखा कि देखो ग्रामीण क्षेत्र में बैल है और दूसरा पशुवारी उपयोग जो है खेती में परिवहन कार्य में भी करो जावे।
0: हाँ हाँ।
1: और बीमार पशु अपनी पूरी क्षमता काम नहीं कर सके और टीकाकरण करावांगा तो देखो पशु स्वास्थ्य और ऊर्जावान बनेगा और बणियों कही कि बनारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगा और कृषि कार्य में भी सहायता मिलेगा। देखो अपनी आय में भी वृद्धि होगा।
0: सही बात है नंदू भाई। और देखो सर जटे बात करें हाँ बेहतर गुणवत्ता वाला पशु उत्पाद री, तो स्वस्थ पशुओं प्राप्त अपने जो दूध है, मांस है, अंडा है या दूसरा कोई भी उत्पाद है अधिक गुणवत्ता पूर्ण वेगा। रोगग्रस्त पशुओं प्राप्त उत्पादा री गुणवत्ता प्रभावित हो सके। टीकाकरण पशु स्वास्थ्य अच्छो रहेगा। जड़ियों कही कि उपभोक्ता ने आप कैसे कहा कि जो भी उत्पाद आप ही दे रहे हाँ भी सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद उन्होंने दे सकेंगे।

0: बिल्कुल भावना भाई साहब, आपने किसान भाई बहनों ने अभी कहना चाहूंगा कि देखो भारत में पशुधन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है सा, और
1: हाँ
0: पशुओं में फैलवा वाली महामारी बड़ा स्तर पर नुकसान देवे, और अगर नियमित टीकाकरण कार्यक्रम रे माध्यम पशुधन की सुरक्षा करी जा रही है सा, और अणि देश में जो है अपने अणि कारणों दुग्ध उत्पादन में और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था ने मजबूती मिल रही है
1: सही
0: सा।
1: बात है। और हाथे हाथे बात करा मानव स्वास्थ्य री सुरक्षा री, तो देखो सा नंदू भाई, कुछ पशु रोग ऐसा वे जो कि पशुओं मनुष्य में भी फैल सके,
0: बिल्कुल सा,
1: अणा ने जूनोटिक रोग आप ही केव सा, और टीकाकरण ऐसा रोग रे प्रसार ने नियंत्रित की दो जा सके और मानव स्वास्थ्य री भी रक्षा की दी जा सके। अणी प्रकार पशु टीकाकरण केवल अपने पशुओं रे वास्ते इस नहीं, बल्कि आप ही कह सका कि अपने मानव समाज रे वास्ते भी लाभदायक है सा।
0: बिल्कुल भावना भाई साहब, सरकार टेम टेम पे जो है पशु टीकाकरण अभियान चलावे
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: कई टीका जो है निशुल्क उपलब्ध करावे, और आ में अलग अलग योजना रो लाभ उठाई पशुपालक अपने पशुओं ने सुरक्षित रखी सके, और अणु कहिए कि पशुपालन ने व्यवसाय ने बढ़ावा भी मिलेगा और किसानारी आय में वृद्धि भी वेगा
1: सही
0: सा।
1: बात है। और कुल मिलाइन तो नंदू भाई आपने यो इस कहो है कि पशु टीकाकरण जो है पशुधन प्रबंधन रो एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है,
0: हाँ सर,
1: और यो अपने पशुओं ने संक्रामक रोगों बचावे, मृत्यु दर कम करे, दूध और दूसरा उत्पादारे उत्पादन में वृद्धि करे, और अपने पशुपालकारे वास्ते जो है आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करे
0: बिल्कुल
1: सा।
0: आप ठीक ही रहे हो ना। लारे लारे अपने किसान भाई बहना ने कहना चाहूंगा कि यो रोगा रे प्रसार ने भी रोके,
1: हाँ
0: पशुधन री
1: हाँ
0: गुणवत्ता सुधारवा में और मानव स्वास्थ्य री रक्षा करवा में भी यो महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। अंडे वाते अपना प्रत्येक पशुपालक ने अपना पशुआ ने नियमित रूप टीकाकरण कराना जरूरी है। स्वस्थ पशु पालन और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था री आधारशिला है। तो अपने किसान भाई बहनों ने यो इस कहना है कि अपना पशुओं और स्वास्थ्य रो भी अपने नियमित जांच करती रहनी सा।
1: सही बात है। और देखो सर, टेम टेम पे जो आप ही जानकारी देवा टीकाकरण के बारे में और जो भी बीमारियां चल रही है वनारे बारे में, अपना जो खेती बाड़ी करवा वाला जो पशुपालक भाई है वी थोड़ा सजग रहे, सतर्क रहे, और टेम टेम पे पशुओं रो टीकाकरण करावे ताकि वनारो ज़्यादा ज़्यादा लाभ भी ले सके, और देखो सर लाभ रे रूप में वनारे उत्पादन में वृद्धि वेगा, तो निश्चित रूप आप ही कह सका कि वनारे घर परिवार में खुशहाली और आनंद मंगल छाया रहेगा।
0: बिल्कुल सर,
1: और देखो सा अणि आनंद मंगल ने और बढ़ाता था का कार्यक्रम में आगे बढ़ावा, और एक और मन भावन राजस्थानी लोकगीत अपने कार्यक्रम में माध्यम सुनावा नहीं सा।
0: बिल्कुल हुणावा सर।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: हाँ तो नंदू भाई, यो तो सुनियो आप संदेश और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत सुनियो सा।
9: बिल्कुल सा।
8: और देखो सा, आज जानकारी दे दिया हाँ अपने कार्यक्रम रे माध्यम विश्व साइकिल दिवस और पर्यावरण अनुकूल परिवहन रे बारे में। और जटे बात करा, विश्व साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जून ने मनायो जावे। अणि दिवस ने मनावारी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वर्ष 2018 में की दी ही।
9: बिल्कुल सा।
8: और अंडो उद्देश्य साइकिल रे महत्व ने पहचान देनो और लोगा ने स्वास्थ्य पर्यावरण और सतत विकास के लिए साइकिल रे उपयोग रे प्रति जागरूक करनो है सा।
9: बिल्कुल आप ठीक रहे हो कि साइकिल एक सस्तो, सरल, सुरक्षित और पर्यावरण अनु कुल परिवहन रो साधन है, जो कि सब आयु वर्ग रे लोगा रे वास्ते बहुत ही ज्यादा उपयोगी है सा।

0: सर,
1: और साइकिल नहीं केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य ने बेहतर बनावे बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे सा।
0: सही बात है। और देखो सर, आज के टाइम में बढ़तो तको प्रदूषण, ईंधन की खपत और यातायात की समस्या के कारण पर्यावरण अनुकूल परिवहन की आवश्यकता पहलियों और ज्यादा बढ़
1: बिल्कुल
0: गई है।
1: सा,
0: और साइकिल एक ऐसा साधन है जो कि कहीं भी प्रकारों धुओं या हानिकारक गैसा उत्सर्जित नहीं करे। अंडे उपयोग वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आवे सा।
1: बिल्कुल भावना भाई साहब। पर्यावरण अनुकूल परिवहन तात्पर्य या अंडो मतलब यो है कि अच्छा पर्यावरण रा परिवहन रा साधन जो कि
0: हाँ
1: प्रकृति ने कम नुकसान पहुंचावे। साइकिल, पैदल चलनो, सार्वजनिक परिवहन रो उपयोग करनो, विद्युत चालित वाहन रो उपयोग करनो और साझा परिवहन यानी कि शेयरिंग सिस्टम अंडा प्रमुख उदाहरण है ऐसा। और अणा साधना रो उपयोग अगर आप ही करा तो अणा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम वेवे और प्राकृतिक संसाधन रो संरक्षण भी वेवे सा।
0: सही बात है। और देखो सर, नंदू भाई, साइकिल चलावाऊ अनेक स्वास्थ्य लाभ भी वे। नियमित साइकिल चलावाऊ शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहे, अपनो हृदय जो है मजबूत वेवे, मांसपेशियां सुदृढ़ बने और मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां जोखिम ने भी कम करे। साथ ही साइकिल चलावाऊ जो है मानसिक तनाव भी कम वेवे और व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस करे सा।
1: बिल्कुल भावना भाई साहब। आज रे दिन रे अवसर पर देखो देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां वे जनी में रैलियां है, जागरूकता अभियान है, साइकिल यात्रा है, प्रतियोगिता है, ये अलग अलग आयोजित करी जावे सा।
0: सही बात है।
1: और अणा कार्यक्रम रो उद्देश्य लोगों ने निजी वाहन रे स्थान पर साइकिल है और दूसरा पर्यावरण अनुकूल परिवहन रा जी भी साधन है वणा ने अपनावा पे प्रेरित करियो जावे सा।
0: सही बात है। और विद्यालय, महाविद्यालय और सामाजिक संगठन द्वारा भी अनिदन विशेष गतिविधियां रो आयोजन किदो जावे।
1: बिल्कुल।
0: और देखो सा, वर्तमान टाइम में जटे बात करे, हाँ, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया एक रे सामने गंभीर चुनौती बन चुकियो है। और असम में साइकिल एक स्वच्छ परिवहन साधन रो उपयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगर आप ही कहा कि अधिक और अधिक लोग छोटी दूरी की यात्रा के वास्ते साइकिल का उपयोग करेगा तो प्रदूषण में आप ही कैसे का कमी आएगा और स्वस्थ समाज और निर्माण किदो जा सकेगा।
1: बिल्कुल। आपनो तो अपने किसान भाई बहनों ने यो इस कहना है सा कि विश्व साइकिल दिवस आपने यो संदेश दे कि साइकिल केवल एक परिवहन रो साधन नहीं है बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छ पर्यावरण री बढ़वारी उम्मीद रो माध्यम है सा। और पर्यावरण अनुकूल परिवहन ने अपनाई आपी आपने आने वाली जो पीढ़ियां है वहां ने एक सुरक्षित, स्वच्छ और हरित भविष्य निर्माण आपी कर सका।
0: सही बात है। और देखो सा, नंदू भाई, जानकारी सिलसिला ने दा आटे विराम और आपको तो अपने कार्यक्रम में माध्यम एक और मन भावन राजस्थानी लोकगीत सुनावा नहीं सर।
1: बिल्कुल सुनावा सर।

0: हाँ तो नंदू भाई, यो तो सुनियो मनभावन राजस्थानी लोकगीत। और देखो सा, घड़ी रे आड़ी ना रहो तो अपने चालवा रो टाइम वेजो है। आपे किसान भाइयों आ गया लान सा,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सर।
0: सा।
2: कृषि जगत, हमारे किसान भाई ने सुना अभी अपना पसंदीदा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के ठीक 3 बजने को है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और पीड़ित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार के रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण

0: संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गाँव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रतिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें ऋतव्रता बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथ से विधायक अखुजनाम को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंग्यांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के ठीक 3:05 हो रहे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अगली सभा के प्रसारणों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवाओं का चहेता दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: मौसम की ये ठंडी हवाएं कुछ कह रही हैं, दिल के तारों को हल्के हल्के छेड़ रही है, जैसे हर नई शाम एक नया अरमान लाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और मेरे साथ है
1: गीतांजलि।
0: और आज का युवाणी कार्यक्रम कुछ खास होने वाला है, इस सुहाने मौसम की तरह बिल्कुल फ्रेश और दिलचस्प।

0: तो निहल, इसी गाने के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम।
1: बिल्कुल, तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त की है कमी, फिर भी स्वाद चाहिए घर जैसा हर घड़ी। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब यही चाहते हैं, कम समय में स्वादिष्ट और अच्छा खाना। और इसी जरूरत को समझते हुए आज के युवा एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं, फ्रोजन फूड स्टार्टअप्स, जो कन्वीनियंस और टेस्ट दोनों को बैलेंस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, फ्रोजन फूड अब सिर्फ रेडी टू ईट नहीं रहे, बल्कि ये हेल्दी, हाइजीनिक और टेस्टी ऑप्शंस के रूप में सामने आ रहे हैं।
1: और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है गीतांजलि, कि कई युवा एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जैसे फ्रोजन पराठास, मोमोज, नजेट्स, आइसक्रीम्स, ये सब अब आसानी से अवेलेबल है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है गीतांजलि, क्या फ्रोजन फूड सच में सेफ और हेल्दी है?
0: बिल्कुल निहल, अगर सही तरीके से प्रोसेस और स्टोर किया जाए तो फ्रोजन फूड्स न्यूट्रिएंट्स को सही और काफ़ी हद तक मेंटेन करते हैं, और आजकल स्टार्टअप्स क्वालिटी और हाइजीन पर बहुत ध्यान देते हैं।
1: सही कहा, और टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बहुत मदद की है। क्विक फ्रीजिंग टेक्निक से फूड का टेस्ट और फ्रेशनेस बरकरार रहता है, और यही वजह है कि स्टार्टअप्स न सिर्फ कस्टमर्स को कन्वीनियंस दे रहे हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं।
0: तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्रोजन फूड स्टार्टअप आज के युवाओं के लिए एक प्रॉफिटेबल और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया बन चुका है।
1: अगर आपके पास यूनिक आइडिया है और फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
0: तो दोस्तों, याद रखिए, खाना चाहे फ्रोजन हो, लेकिन सपने हमेशा फ्रेश होने चाहिए।
1: और जब युवा अपने आइडियाज़ को एक्शन में बदलते हैं, तो वही आइडियाज़ एक सफल स्टार्टअप बन जाते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पत्थरों में धड़कती है इतिहास की कहानी, हर मूर्ति में छुपी है सदियों की जुबानी। दोस्तों, हमारे देश की धरती पर ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की जीवित मिसाल है बन जाते हैं। तो साथियों, आपको ले चलते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर की ओर जो अपनी कला, संस्कृति और अद्भुत शिल्पकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स।
3: निहाल, खजुराहो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सुंदर मंदिरों और बारीक नक्काशी की तस्वीर आ जाती है।
2: बिल्कुल, ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इनका निर्माण लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेला डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था।
3: और मंदिरों की सबसे खास बात है इनकी इंट्रिकेट क्रेविंग्स, यानी इतनी बारीक नक्काशी कि हर मूर्ति कहानी बयां करती है। यहाँ की मूर्तियाँ सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि ये उस समय के समाज, जीवन शैली और भावनाओं को भी दर्शाती है।
2: बिल्कुल गीतांजलि, जब मैंने पहली बार खजुराहो की फोटोज देखी तो ऐसा लगा जैसे पत्थर कुछ बोल रहे हो। वहाँ की हर आकृति में एक अलग ही अभिव्यक्ति थी।
3: बिल्कुल नील, अगर हम वहाँ खुद जाएं तो एक्सपीरियंस और भी खास हो जाता है। वहाँ का शांत वातावरण और भव्यता आपको इतिहास से जोड़ देती है।
2: बिल्कुल गीतांजलि, अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ कभी 85 मंदिर हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में केवल 25 मंदिर ही बचे हैं और इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य भव्यता के कारण इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का दर्जा प्राप्त है।
3: बिल्कुल नील, अगर मंदिरों के समूह की बात करें तो यहाँ अध्ययन के लिए सुविधा

0: के लिए मंदिर को तीन प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है। पहला समूह पश्चिमी समूह, जिसे वेस्टर्न ग्रुप कहा जाता है, जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध समूह है। यहाँ का सबसे प्रमुख और भव्य मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और 64 योगिनी मंदिर भी इसी समूह का हिस्सा है। दूसरा समूह पूर्वी समूह, जिसे ईस्टर्न ग्रुप भी कहते हैं, इसमें जैन धर्म से जुड़े मंदिर शामिल है, जैसे आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर, और साथ ही यहाँ वामन और जाबरी माँ मंदिर भी है। तीसरा समूह दक्षिणी समूह, इसमें दूल्हादेव और चतुर्भुज मंदिर स्थित है।
1: सही कहा, और ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। लेकिन आज के समय में इन ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनमोल है।
0: तो क्यों ना हम ये संकल्प लें कि जब किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या कहीं भी जाएं तो उसकी क्लीनलीनेस और रेस्पेक्ट का ध्यान जरूर रखें।
1: जी बिल्कुल, और दोस्तों याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं इन पत्थरों में भी जिंदा है, और जब हम अपनी विरासत को समझते हैं और सहजते हैं तो हम अपने भविष्य को और मजबूत बनाते हैं।

0: दोस्तों, रंगों में छुपे ख्वाब जब हकीकत बन जाते हैं तो साधारण से कपड़े भी पहचान बन जाते हैं। यही तो हुनर है आज के युवाओं का, जो हर धागे में अपना भविष्य बुन जाते हैं। दोस्तों, रंगों और ख्वाबों की जब बात छिड़ी है तो आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि ये टॉपिक कितना क्रिएटिव होने वाला है।
1: जी दोस्तों, ये एक ऐसा कैरियर है जो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस भी डिज़ाइन करता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग।
0: बिल्कुल, आज के युवाओं के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ क्रिएटिविटी ही सबसे बड़ी ताकत है। और गीतांजलि, पहले लोग इसे सिर्फ कपड़े सिलने तक सीमित समझते थे, लेकिन आज ये एक प्रोफेशनल करियर बन चुका है। जैसे हम देखते ही हैं मूवीज़ में, टीवी में, फैशन इंडस्ट्री में और थिएटर में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है।
1: और सबसे खास बात ये है कि आज का युवा इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग उन्हें वो मौका देता है जहाँ वे अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदल सकते हैं।
0: जी हाँ, और यूथ एम्पावरमेंट का असली मतलब भी यही है, युवाओं को उनके हुनर के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। और वैसे गीतांजलि, हम देखते ही हैं कि आज कई युवा डिज़ाइनर्स अपने खुद के ब्रांड्स शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। लेकिन गीतांजलि, यहाँ एक सवाल भी आता है, क्या सिर्फ टैलेंट काफ़ी है?
1: नहीं निहल, टैलेंट के साथ साथ ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम्पल, फैशन ट्रेंड्स, फैब्रिक नॉलेज और कलर कॉम्बिनेशन, ये सब सीखना पड़ता है।
0: और आजकल तो सोशल मीडिया ने भी युवाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइन दिखाकर पहचान बना रहे हैं। और देखा जाए तो यही यूथ एम्पावरमेंट है, अपने स्किल को पहचानना, उसे निखारना और दुनिया के सामने लाना।
1: तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, फैशन का शौक है और कुछ अलग करने का जज्बा है तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है।
0: तो दोस्तों, याद रखिए, सुई धागे से सिर्फ कपड़े नहीं बनते बल्कि सपनों को आकार मिलता है जब युवा अपने हुनर को पहचान लेते हैं, तो वही हुनर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है।
2: जल्वा, जल्वा, जल्वा।

0: दो पहियों पर चलती थी बचपन की वो कहानी, न पेट्रोल की चिंता न ट्रैफिक की परेशानी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम सभी मना रहे हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे।
1: सच में साइकिल ये सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि हमारी यादों का हिस्सा है। निहल, याद है वो दिन जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था?
0: अरे बिल्कुल, पहले तो कितनी बार गिरे, इवन चोट भी लगी, लेकिन जब बैलेंस बना तो जो खुशी मिली वो आज भी याद है। और सबसे मज़ेदार बात गीतांजलि, बिना ब्रेक के तेज़ चलाना, दोस्तों के साथ रेस लगाना, वो अलग ही मज़ा था।
1: हाँ, लेकिन आजकल हम धीरे धीरे साइकिल से दूर होते जा रहे हैं। थोड़े से डिस्टेंस के लिए भी अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम बाइक या कार लेकर निकल जाते हैं।
0: सही कहा, जबकि साइकिल चलाना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, यानी फ़ायदेमंद। ये न सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि एनवायरनमेंट को भी सेफ रखता है, क्योंकि साइकिल चलाने से पॉल्यूशन कम होता है, फिटनेस बनी रहती है और स्ट्रेस भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की शुरुआत है।
1: और अगर हम अपने डेली रूटीन में थोड़ी सी साइकिलिंग शामिल कर लें तो ये हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता है।
0: तो क्यों ना आज इस खास दिन पर हम ये प्रॉमिस करें कि हफ्ते में कम से कम एक दिन साइकिल ज़रूर चलाएंगे।
1: वाह निहल, और अपने दोस्तों और परिवार को भी इसके लिए इंस्पायर करेंगे।
0: तो दोस्तों याद रखिए, छोटी सी साइकिल बड़ा सा बदलाव ला सकती है, और कभी कभी पुरानी यादों को दोहराने के लिए बस हमें बस दो पहियों पर फिर से चलना होता है।

0: दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे साहित्यिक हस्ती की कहानी जिन्होंने मलयालम कविता को एक नई ऊंचाई दी।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं गोविंद शंकर कुरूप की, जिन्हें जी शंकर कुरूप के नाम से भी जाना जाता है।
0: इनका जन्म 3 जून 1901 यानी आज के दिन केरल के नायतोट नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। ये एक साधारण परिवार में जन्मे कुरूप के बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी हैं।
1: मात्र 3 साल की उम्र में उनकी शिक्षा शुरू हो गई थी और सोचिए, 8 साल की उम्र तक वे अमरकोश, सिद्धरूपम और श्री रामोन्नतम जैसे ग्रंथ कंठस्थ कर चुके थे।
0: और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये वे रघुवंश महाकाव्य के कई श्लोक भी पढ़ चुके थे। यह उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और साहित्य के प्रति प्रेम को दर्शाता है।
1: 11 वर्ष की आयु में जब महाकवि कुंजी कुट्टन उनके गाँव आए, तब से उनका रुझान कविता की और भी बढ़ गया।
0: बाद में तिरुवल्लमला में अध्यापन करते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया, जिसने उनके लेखन में एक नई गहराई और गेयता जोड़ दी।
1: उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना ओष्टकुशल, जिसका अर्थ है बांसुरी, उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार तक ले गई।
0: साथ ही उनकी कविता ग्रह विश्व दर्शनम के लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
1: और उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया।
0: और 2 फरवरी 1978 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी कविताएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं।
1: सच में गोविंद शंकर कुरूप केवल एक कवि नहीं बल्कि एक युग है, जिनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित है।
0: अब बात करते हैं दो ऐसे प्लेयर्स की जिन्होंने चैलेंज को अपनी ताकत बनाया और देश का नाम रोशन किया। पहले बात करेंगे ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन अजय कुमार रेड्डी की, और फिर जानेंगे इंडियन वुमेन हॉकी के स्टार डिफेंडेंट डीप ग्रेस एका की प्रेरणादायक कहानी के बारे में।
1: अजय कुमार रेड्डी का जन्म 3 जून 1990 को आंध्र प्रदेश के गंटूर डिस्ट्रिक्ट में के माचिरल शहर में हुआ था। बचपन में एक एक्सीडेंट के कारण उनकी आईसाइट पर असर पड़ा और उन्हें विजुअल इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की और वहीं से क्रिकेट के लिए उनका पैशन और मजबूत हुआ। अजय ने 2010 में इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया। अपने पहले इंटरनेशनल टूर पर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते और 2022 में वाइस कैप्टन की पोजीशन संभाली। 2016 में अजय को ब्लाइंड क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया।
0: उनकी लीडरशिप में इंडिया ने 2016 में ब्लाइंड T20 एशिया कप जीता, 2017 में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता, 2018 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और 2022 में ब्लाइंड T20 कप जीता और हैट्रिक टाइटल हासिल किया। अजय को अपने टैलेंट और हार्ड वर्क के लिए 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला।
1: दोस्तों, अजय कुमार की लाइफ से हमें कई लाइफ लेसन्स मिलते हैं कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, लेकिन उनसे लड़ना ही रियल सक्सेस होते हैं। साथ ही वो ये भी बताते कि बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता।
0: अब बात करते हैं इंडियन वुमेन हॉकी की, एक ऐसी प्लेयर जिनकी स्ट्रॉन्ग डिफेंस और शानदार खेल ने इंडिया को कई रिमार्केबल विक्ट्रीज दिलाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दीप ग्रेस एका की।
1: दीप ग्रेस एका का जन्म 3 जून 1994 यानी कि आज ही के दिन ओडिशा में हुआ था। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल और लोकल टूर्नामेंट में उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने कोचेस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।
0: उनकी डिफेंसिव स्किल्स, स्पीड और गेम्स को समझने की कैपेसिटी ने उन्हें जल्द ही नेशनल लेवल तक पहुंचाया। इंटरनेशनल हॉकी में भी दीप ग्रेस एका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स और एशिया कप में। उनकी अगर बात करें अवार्ड्स के बारे में, तो उन्हें 2022 में अर्जुन अवार्ड और 2021 में प्रगत सिंह अवार्ड से नवाजा गया था।
1: दोस्तों, आज के यूथ के लिए भी दीप ग्रेस एका की जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है कि आपको हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, और हार्डवर्क और डिसिप्लिन से आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं और अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखिए।
0: तो दोस्तों, ये थी इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ दीप ग्रेस एका, एक ऐसी प्लेयर जिन्होंने

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेनिस की दुनिया की एक ऐसे लेजेंड की जिनका नाम सुनते ही फाइटिंग स्पिरिट, डिसिप्लिन और नेवर गिव अप एटीट्यूड याद आ जाता है, राफेल नडाल की। राफेल नडाल को दुनिया किंग ऑफ क्ले के नाम से भी जानती। उन्होंने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और हार्डवर्क से टेनिस हिस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई है।
5: बिल्कुल, इनका जन्म 3 जून 1996 को स्पेन में हुआ था। उनके अंकल टोनी नडाल ने उनके टैलेंट को पहचाना और बहुत छोटी एज से ही उनकी कोचिंग स्टार्ट कर दी। और ख़ास बात, नडाल ने सिर्फ 8 साल की एज में रीजनल टेनिस चैम्पियनशिप जीत ली थी। उनकी पावरफुल फोरहेड शॉट्स, इनक्रेडिबल स्पीड और फाइटिंग स्पिरिट ने उन्हें दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में इंक्लूड कर दिया।
4: 2005 में उन्होंने पहली बार फ्रेंच ओपन जीता। दोस्तों, अगर क्ले कोर्ट टेनिस की बात हो और राफेल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राफेल ने फ्रेंच ओपन में इतनी बार विक्ट्री हासिल की कि उन्हें किंग ऑफ क्ले कहा जाने लगा। उनकी कंसिस्टेंसी, स्टेमिना और मेंटल टफनेस ने उन्हें एक यूनिक चैम्पियन बनाया। और नडाल का करियर सिर्फ ट्रॉफीज़ और विक्ट्रीज़ की कहानी नहीं, उन्होंने कई सीरियस इंजरीज़ का भी सामना किया।
5: और साथ ही इन्होंने अपने करियर में बहुत टाइटल्स और अवार्ड्स जीते हैं, जैसे ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, ओलंपिक गोल्ड मेडल, गोल्ड डेविस कप विक्ट्रीज, लेनियर वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ATP अवार्ड्स, ITF वर्ल्ड चैंपियन और नेशनल ऑनर्स।
4: दोस्तों, राफेल नडाल की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं कि हमें सक्सेस के लिए कंटिन्यूस हार्डवर्क और डेडिकेशन रखनी चाहिए और फेलियर किसी भी चीज़ का एंड नहीं होता और डिसिप्लिन हर सक्सेस के लिए की होती है।
5: दोस्तों, राफेल नडाल की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का रास्ता कभी इजी नहीं होता, लेकिन पेशेंस, डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
4: दोस्तों, अब हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे सितारे की जिन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जाना जाता है, वसीम अकरम। एक ऐसे खिलाड़ी जिसने अपनी तेज गेंदबाजी, स्विंग और शानदार नेतृत्व के क्रिकेट जगत में इतिहास रचा।
5: जी हाँ, इनका भी जन्म आज के दिन 3 जून 1966 को लाहौर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने क्रिकेट की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनके नेचुरल टैलेंट ने जल्द ही सबका ध्यान अट्रैक्ट कर लिया। सिर्फ 18 साल की एज में उन्हें पाकिस्तान के नेशनल टीम में खेलने का चांस मिला। उनकी तेज गेंदबाजी और गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग करने के टैलेंट ने उन्हें जल्द ही दुनिया का बेहतरीन गेंदबाजों में शामिल कर दिया।
4: वसीम ने अपना टेस्ट क्रिकेट डेब्यू 1985 में करा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी रिवर्स स्विंग, जिसमें पुरानी गेंद भी तेज़ी से दिशा बदलती थी। इस कला को लोकप्रिय बनाने में वसीम अकरम का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वसीम अकरम के करियर का सबसे यादगार पल था 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। उस समय पाकिस्तान टीम के कैप्टन इमरान खान थे। फाइनल मुकाबले में वसीम अकरम ने शानदार प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उनकी दो कंटिन्यूस बॉल्स जिन पर उन्होंने ऑपोजिट टीम के बैट्समैन को आउट किया, आज भी क्रिकेट के इतिहास के सबसे यादगार पलों में गिनी जाती है। यह जीत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था।
5: बिल्कुल सही कहा, इन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत से बहुत सारे रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स जीते। रिकॉर्ड्स की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने और वनडे क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले फर्स्ट बॉलर बने। अगर अवार्ड्स की बात करें तो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 1993, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2009, हिलाल ई इम्तियाज 2019, PCB हॉल ऑफ फेम 2022 और लक्स स्टाइल अवार्ड मोस्ट स्टाइलिश स्पोर्ट्स पर्सन 2003।
4: रिटायरमेंट के बाद भी वसीम क्रिकेट से जुड़े रहे। वो क्रिकेट कमेंट्री और यंग प्लेयर्स को एक्टिवली गाइड कर रहे हैं। वर्ल्ड के यंग बॉलर्स उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और उनकी टेक्निक सीखने की कोशिश करते हैं।
5: दोस्तों, वसीम अकरम की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। टैलेंट कभी

0: तभी चमकता है जब उसके साथ मेहनत हो, डिसिप्लिन और डेडिकेशन किसी भी फील्ड में सक्सेस की की है। अपनी स्ट्रेंथ और आइडेंटिफाई करके उन्हें इम्प्रूव करते रहना चाहिए।
1: दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने पोल वॉल्ट की दुनिया में कई रिकॉर्ड सेट करे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं येलेना इसिनबायेवा की।
0: इनका जन्म भी 3 जून 1982 को वोल्गोरोड में हुआ था। बचपन से ही उन्हें खेलों में रुचि थी। शुरुआत में उन्होंने जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ली, लेकिन उनकी लंबाई और बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए कोच ने उन्हें पोल वॉल्ट की ओर जाने की सलाह दी। येलेना का ओलंपिक सफ़र भी बेहद शानदार रहा।
1: उन्होंने 2004 में समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद 2008 में समर ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी। उन्हें इनकी परफॉर्मेंस के लिए नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, जैसे कि लॉरेस वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2004, 2005 और 2008 में, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2004 एंड 2005 में, IAAF डिस्टिंग्विश्ड करियर अवार्ड 2013 में।
0: दोस्तों, हर सफल व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं और येलेना भी इससे अछूती नहीं रही। अपने करियर के दौरान उन्हें चोटों और प्रतिस्पर्धा के दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे बार बार वापस आई और अपने प्रदर्शन से साबित किया कि सच्चे चैंपियन मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर होती है।
1: दोस्तों, येलेना की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, परिस्थिति बदले तो खुद को बदलने से मत डरिए, सफलता के लिए निरंतर मेहनत करिए। दोस्तों, येलेना की यात्रा में यह सिखाती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि अनुशासन, दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास से हासिल होती है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
5: दोस्तों बात करते हैं आज के इतिहास की। 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार थे।
6: और 1924 में भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ मुथुवेल करुणानिधि का जन्म हुआ।
5: 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाइटहुड का टाइटल मिला।
6: और 1918 में गांधी जी की प्रेसिडेंसी में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ था और हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया।
5: 1947 में इंडिया के लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया का पार्टीशन अनाउंस किया।
6: अब बात करते हैं आज के स्पोर्ट्स अपडेट के बारे में। पहली हमारी अपडेट है SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 में आज भारत की वुमेन्स फुटबॉल टीम का सामना भूटान से सेमीफाइनल में होगा और ये मैच गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारगांव में 8 बजे से खेला जाएगा।
5: इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 में भारत की PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसनन को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलने के वादे के साथ, आज मैं थी आपकी रेडियो दोस्त गीतांजलि और मेरे साथ
1: नेहल। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो

0: लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा श्रीमाली। तो साथियों, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में अगले 25 मिनट तक हम साथ होंगे और करेंगे मौसम की सुहानी बातें, पुराने प्यार की मीठी यादों और सदाबहार फिल्मी गीतों के साथ। दोस्तों, मौसम और प्यार का रिश्ता भी बड़ा अनोखा होता है। कभी ठंडी हवाएं किसी की याद बनकर दिल को छू जाती है, तो कभी बरसात की बूंदें बीते हुए लम्हों की तस्वीर आंखों के सामने ले आती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हवा के झोंके में आज भी उसका एहसास मिलता है। हवा के झोंकों में आज भी उसका एहसास मिलता है, जो कभी मेरे दिल के बहुत पास मिलता था। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।

0: AIR at 90.
1: साथियों, गीत सुनकर दिल भी जैसे पुराने दिनों की गलियों में टहलने निकल पड़ा हो। सच है, कुछ रिश्ते भले ही समय के साथ दूर हो जाएं, लेकिन उनकी यादें मौसम की तरह बार बार लौट आती है। कहते हैं ना, कुछ यादें बारिश की बूंदों जैसी होती है। कुछ यादें बारिश की बूंदों जैसी होती है, जितना भुलाना चाहो उतनी ही गहरी हो जाती है। जब कभी बादल गिरते हैं तो लगता है जैसे यादों का कारवा भी साथ चला आया हो।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और फिल्म संगीत के गीतों को सुनकर दिल में भी जैसे पुराने दिनों की गलियों में टहलने निकल पड़ा है। सच है, कुछ रिश्ते भले ही समय के साथ दूर हो जाएं, लेकिन उनकी यादें मौसम की तरह बार बार लौट कर आती है। कुछ यादें बारिश की बूंदों के जैसी होती है, जितना भुलाना चाहो उतनी ही गहरी हो जाती हैं। और प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो कभी पुराना नहीं होता। समय बदल जाता है, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन सच्ची भावनाएं हमेशा दिल के किसी कोने में सुरक्षित रहती है। वो मुलाकातें, वो बातें, वो हंसते हुए पल आज भी दिल की किसी किताब में महकते हैं कल।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और आज हम बात कर रहे हैं मौसम के इस मिजाज की और पुराने प्यार की यादों की। और जब शाम ढलती है ना दोस्तों, तो यादों का ये सिलसिला और भी गहरा हो जाता है। दोस्तों मौसम चाहे बसंत का हो, सावन का हो या सर्दियों का, प्यार हर मौसम में अपना रंग बिखेर देता है। मौसम बदलते रहे, साल गुजरते रहे, मौसम बदलते रहे, साल गुजरते रहे, कुछ चेहरे मगर दिल में हमेशा ठहरते रहे। कभी कभी कोई पुराना गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे बरसों पहले की कोई कहानी फिर से जीवंत हो उठी हो।

साथियों, इन मधुर गीतों और यादों से भरी बातों के साथ ही आज का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मौसम बदलते रहेंगे, यादें महकती रहेगी, गीतों की ये महफिल यूं ही सजती रहेगी। आपकी रेडियो दोस्त नेहा को इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद शाम 6:40 पर होगी जिले की चिट्ठी और शाम 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता मंजूर की। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार, 15-20 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की संभावना। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील, इसे स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर हवाई यात्रा को महंगी होने से बचाने के लिए मूल्य स्तरीकरण कोष ATF को मंजूरी दे दी है। विमान ईंधन की कीमतों में आए भारी उछाल से इस क्षेत्र को बचाने के लिए ये फंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य संकट के समय उचित कीमत पर ईंधन की आपूर्ति करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विमानन क्षेत्र से जुड़े 77,00,000 रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
3: जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
4: फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70,00,000 से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को आधुनिक वाहनों में बदलने की योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सहयोग से लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली के मालवीय नगर में आज एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना में 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आगजनी की इस घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। देश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को सशक्त करने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है। देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचने के लिए जागरूकता जरूरी है। श्रीमती मुर्मू ने सभी एजेंसियों और हितधारकों से

0: जनजातीय कल्याण से जुड़े हर बिंदु पर ध्यान देने को कहा।
1: आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल और डॉक्यूमेंट का उद्देश्य किसी मनुष्यों के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित।
0: भारत सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। देश ने सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की स्थिति दुनिया भर में मजबूत हो रही है। श्री जोशी ने कहा कि देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तेज गति से बढ़ रहा है, इससे ऊर्जा सुरक्षा सशक्त हो रही है। इधर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों ने 7171 मेगावाट बिजली उत्पादन कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रदेश की 7580 मेगावाट क्षमता की 23 इकाइयों ने कल ये उपलब्धि हासिल की। प्रदेश के 26 जिलों के दो दो ब्लॉक में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 2027 तक प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली देने की कवायद में अब चित्तौड़गढ़ और टोंक जिला भी शामिल हो गया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में अजमेर डिस्कॉम के 13, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 10 और जोधपुर निगम के 3 जिलों के दो दो ब्लॉक में दिन में बिजली मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तेज अंधड़, बरसात और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। साथ ही कई हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं। विभाग के अनुसार आंधी बारिश का ये सिलसिला 6 जून तक बना रह सकता है। इस दौरान हीट वेव से राहत का दौर बना रहेगा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के अगले 15 से 20 दिनों में विभिन्न स्थानों पर पहुंचने की संभावना है।
2: वर्तमान में मानसून के केरल तट पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आगामी 24 घंटों में केरल में मानसून की दस्तक होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार इस बार पूरे देश में सामान्य से 10% कम बारिश होने के लिए पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में इस वर्ष मानसून ऋतु के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने के लिए तकनीक और AI आधारित प्रणालियों के उपयोग पर जोर दे रही है। प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 की अहम भूमिका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में आयोजित वेबिनार में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल वित्तीय प्रणाली में डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसीलिए नियमित सुरक्षा ऑडिट के साथ ही साइबर खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। राज्य सरकार के एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म राजकाज ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को नई गति और दक्षता प्रदान की है। इससे शासन प्रक्रियाएं ज्यादा जवाबदेही और नागरिक केंद्रित हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से विकसित

0: प्लेटफॉर्म से 71 विभागों और 57,000 से अधिक कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। साथ ही राजकाज के जरिए अब तक 50 लाख से ज्यादा ई फाइलें सृजित की जा चुकी हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में श्री मांडविया ने कहा है कि साइकिल स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की पहचान है, ये हमें फिट रखती है। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। श्री मांडविया ने फिट इंडिया आंदोलन के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल अभियान से जुड़ने के लिए युवाओं की सराहना की।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
0: राज्य की ग्रामीण आबादी को अब घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। सहकार से समृद्धि अभियान के तहत सहकारिता विभाग ने ये महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों, पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड की सहायता से इन्हें माइक्रो एटीएम दिए जा रहे हैं। इससे खातों के बैलेंस, वित्तीय लेन देन की जानकारी मिल सकेगी। वहीं समितियों के व्यवस्थापक ग्रामीणों के घर और कार्यस्थलों पर जाकर उनके खाते खोल सकेंगे और जमा संग्रहण भी कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता मंजूर की। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार, 15 से 20 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की संभावना। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील, इसे स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बांके बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में बीते महीने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, विधिक जागरूकता और जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जिले की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा। अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ गंगा दशहरा के अवसर पर कैला देवी स्थित कालीसिल घाट से किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। अभियान के दौरान जिले भर में स्वच्छता, श्रमदान, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र एकोरासी का निरीक्षण कर नवीन फार्म पौंड का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर जल संरक्षण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उनके करौली प्रवास के दौरान पर्यावरण चेतना, जन स्वास्थ्य और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा भी आयोजित की गई। मई में पांचना बांध के पानी को गैर कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़ने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई का काम शुरू किया गया। कमांड क्षेत्र के किसानों ने पहले 39 गांवों तक सिंचाई जल पहुंचाने की मांग रखी, जबकि गैर कमांड क्षेत्र के किसान भी अपनी मांगों को लेकर सक्रिय रहे। प्रशासन पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी करता रहा। कौशल

0: रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय स्थित डाइट परिसर में एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस दौरान निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा 132 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। शिविर में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम चल रहा है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया तथा गुणवत्तापूर्ण तथा त्रुटि रहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में राज्य सरकार का ग्राम रथ अभियान भी ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना रहा। अभियान के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलने के साथ उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए करौली जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राशि के प्रभावी उपयोग और शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीणा ने जिला कारागृह तथा किशोर गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों एवं बालकों को उनके अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा नालसा हेल्पलाइन की जानकारी प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई के साथ साथ विद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजाति गरिमा उत्सव के तहत जिले के चयनित ग्रामों में लाभार्थी सैचुरेशन शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण जागरूकता गतिविधियां चलाई गई। करौली जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपे से संजय भगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल तेल कंपनियां ने घरों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आसारों 10,000 करोड़ रुपया एक मुश्त बजटीय मदद मंजूर करी। भारत सौर ऊर्जा बूता में 155 गीगावाट रो आंकड़ों पार करने दुनिया रो दूजो सबू मोटो बाजार बन्यो। दक्षिण पश्चिम मानसून रे काले केरलम माए आवण रा आसार। 15-20 दिन माए देश रा न्यारा न्यारा थोड़ा ताई पूगण री आस। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया री साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज। इनने स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण मुजब जीवन शैली रो प्रतीक बताया। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार पश्चिम एशिया संकट ने ध्यान में रखता हवाई यात्रा ने महंगी होवणो बचावण सारो मूल्य स्थिरीकरण कोष ETF ने मंजूरी दे दी है। विमान ईंधन री कीमत में आया उछाड़ू ई हल्का ने बचावण सारो ओ फंड बनायो जायला। इनरो मकसद आपदारी बगैर वाजिब कीमत माथे ईंधन री सप्लाई करनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेट री मीटिंग में कई महत्व फैसला माथे मोहर लागी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट रा फैसला री जानकारी देवता मीडिया ने बतायो कि इणु कीपना ते बनाई राखण में मदद मिलेला। वणा कहो कि ई फैसलाओं विमानन हल्काओं जुड़िया 77 लाख रोजगार सुरक्षित वह सकेला।
2: कि आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज का एक ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
3: फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर

0: the airline carriers who want to participate in this, unko ek stable ATF price abhi current crisis ke dauran milega. Isse hamare entire aviation sector mein kareeb 70 lakh se adhik jo jobs hain, jinke upar impact padna aarambh hone laga tha because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: मंत्रिमंडल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी हल्का माए पुराना ट्रका और बसा ने आधुनिक वाहन माए बदलन री योजना ने मंजूरी दी है। आ योजना दिल्ली हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश री मदद लागू करी जाएला। श्री वैष्णव कहो के 2 साल री ई योजना रो मकसद प्रदूषण ने कम करने साफ परिवहन ने बढ़ावो देवनो है। नवी दिल्ली रा मालवीय नगर माए आज एक होटल माए आग लागणो 21 लोगों री मौत वेगी। वठे ही हादसा माए 40 लोगों ने हिफाजती बारे निकाली जा और इला सारू कनेरा अस्पताल माए भर्ती कराई जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसा माथे गहरो दुख जतावना कहो के पीड़िता ने हर चाइज की मदद दी जावे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मरण वाला रा परिवार ने 2-2 लाख रुपये री अनुग्रह रकम दी जाएला। घायला ने 50-50 हजार रुपये री मदद देवन रो ऐलान करीजियो है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हादसा ने घणो दुखदायी बताया है, वरना हादसा में जान गवा देवन वाला रा परिवारजना रे प्रति गहरो शोक जतायो है। देश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां और परियोजनावां ने मजबूत करण सारू आज नवी दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन वियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनरो उद्घाटन करियो। ई मौके राष्ट्रपति कहो के जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूपों घणो मजबूत है, इनने आगे बढ़ावण री कोशिश करी जावनी चाहिए, वणा कहो के अजे ही कई जनजातियां तबका ने सरकारी योजनावां री जानकारी नहीं है। देश रा हर गांव और हर मिनक ताई विकास पुगावण सारू जाग जगावणो जरूरी है। श्रीमती मुर्मू सगली एजेंसियां और हितधारकाओं जनजातीय कल्याण जुड़िया हर बिंदु माथे ध्यान देवण ने कहो।
2: आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल और डॉक्यूमेंट का उद्देश्य किसी मनुष्यों के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित।
1: भारत सौर ऊर्जा भूतामाय बढ़वार करने दुनिया रो दूजो सब मोटो सौर ऊर्जा बाजार बन गयो है। देश सौर ऊर्जा भूतामाय 155 गीगावाट रो आंकड़ो पार कर लियो है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो के रिन्यूएबल एनर्जी रा हलका माए भारत रा हालात दुनिया भर माए मजबूत वह रिया है। श्री जोशी कहो के देश माए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तेज गतियों बढ़ रियो है, इणु ऊर्जा हिफाजत मजबूत वह रही है। अठीने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम रा कोयला आधारित विद्युत ग्रह 7171 मेगावाट बिजली उत्पादन करने अजय ताई रो सब ठाऊ प्रदर्शन कयो है। प्रदेश री 7580 मेगावाट बूतारी 23 इकाइयां काले आ कामयाबी हासिल करी। प्रदेश रा 26 जिला रा 2-2 ब्लॉक माए काश्तकार ने दिन माए बिजली मुहैया कराई जावे। साल 2027 ताई प्रदेश रा खेती उपभोक्तावां ने दिन माए बिजली देवण री कवायद माए अबे चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलाई भेड़ा वे गया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा बतायो के अबार अजमेर डिस्कॉम रा 14 माए 13, जयपुर विद्युत वितरण निगम रा 15 माए 10 और जोधपुर निगम रा 12 माए 3 जिला रा 2-2 ब्लॉक माए दिन माए बिजली मिल रही है। यह समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। मौसम महकमो प्रदेश रा कई हल्का माए तेज अंधड़ बिरखा और ओलापड़न सारू चेताया है। 5 जिला माए बिरखा रो ऑरेंज और 5 जिला माए येलो अलर्ट बताई जो है। साथ ही कई हल्का माए तेज हवाई चाल सके। महकमा मुजब आंधी बिरखा रो और सिलसिलो 6 जून तई बण्यो रह सके है। ई दौरान हीट वेव आराम रो दौर बण्यो रहेला। वठे भारत मौसम विज्ञान केंद्र IMD मुजब कालेऊ दक्षिण पश्चिम मानसून रे केरलम माए आवण री आस बताई जी है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के मानसून रा आवता 15-20 दिना माए न्यारी न्यारी ठोड़ा ताई पुगण री आस है।
3: वर्तमान में

0: मानसून के केरल तट पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आगामी 24 घंटों में केरल में मानसून के दस्तक होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार इस बार पूरे देश में सामान्य से 10% कम बारिश होने के लिए पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में इस वर्ष मानसून ऋतु के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गृह विभाग री आला दर्जा री मीटिंग ली। मुख्यमंत्री रहवास माते भी मीटिंग में श्री शर्मा पुलिस प्रशासन और परिवहन महकमा कानियों गैर कानूनी मॉडिफिकेशन और काली फिल्म वाला वाहना माथे कड़ी कार्रवाई रा निर्देश दिया। साथ ही नशा माथे असरदार आंकस लगावन सारू सरहदी हल्का में खास निगरानी और सावचेती बधावण माथे जोरी दियो। राज्य सरकार सुशासन ने मजबूत करण सारू तकनीक और एआई आधारित प्रणालियां ने काम में लेवण माथे जोर दियो। प्रदेश रा माली बंदोबस्त ने बत्तियों बत्ती साफ गोई जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनावण में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 री खास भूमिका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में विया वेबिनार में रोकड़ प्रबंधन प्रणाली ने मजबूत बनावण री बात कही। वणा साइबर हिफाजत ने ठावी प्राथमिकता देवण रा निर्देश दिया। मुख्य सचिव कहो कि डिजिटल रोकड़ प्रणाली में डेटा हिफाजत महताऊ है। ई कारण बरोबर हिफाजती ऑडिटर साथ ही साइबर खतरा रे प्रति जाग बधाई जावे। विश्व साइकिल दिवस रे मौके केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया लोगों साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज करी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे आपरा संदेश में श्री मांडविया कहो कि साइकिल स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण मुजब जीवन शैली री पिछाण है और आपा ने फिट राखे है। वणा कहो कि इनना काम में लेवणु प्रदूषण में कमी आवेला। साथ ही पेट्रोल डीजल री बचत वेला श्री मांडविया फिट इंडिया आंदोलन रे तहत चलाए जा रिया संडे ऑन साइकिल अभियान जुड़न सारू नौजवाना री सराहना करी।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
1: विश्व साइकिल दिवस रे मौके प्रदेश में कई छोड़ा साइकिल रैली राखी जी। करौली में भी रैली री मार्फत बिना ईंधन वाला परिवहन रा साधन साइकिल ने चावो बनावन रो संदेश दीजियो। ई मौके हनुमानगढ़ में साइकिल जागरूकता संगोष्ठी भी। रेलवे बोर्ड कोटाऊ उज्जैन रे बीच पहली बार सीधी मेमू ट्रेन सेवा ने मंजूरी दे दी है। इनू राजस्थान और मध्य प्रदेश रे बीच धार्मिक और कारोबारी संपर्क और मजबूत वेला। बोर्ड कोटा चौमहला मेमू ट्रेन रो पसारो उज्जैन तय करण री मंजूरी दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन बतायो कि आ रेल सेवा नुआ बगत माथे बरोबर चालती रहेला। कोटाऊ सवाना 6:45 बजे रवाना वेर दोपहर 12 बजे उज्जैन पुगेला। पाछा आवता दोपहर 12:30 बजे उज्जैन रवाना वेर सिंध्या 7 बजे कोटा पुगेला। चुनावी प्रक्रिया और अभियानारी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथमा और नवाचारा माथे बतल सारू नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुई हो। चुनाव आयोग कानियों वैरियो ओ दो दिन रो इस सम्मेलन में जिला चुनाव अहलकार मतदाता पंजीकरण अहलकार शिक्षाविद शोधकर्ता और चुनावी साक्षरता क्लब रा सदस्य भेड़ा वैरिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बतायो कि सम्मेलन में भ्रम वाली सूचनावां दुष्प्रचार AI बनिया डीप फेक समेत दूजा मुद्दा माथे विचार करियो जावे। राज्य री ग्रामीण आबादी रो अबे घरां बैठ्या बैंकिंग सुविधा मिलेला। सहकारू समृद्धि अभियान रे तहत सहकारिता महकमा अमहताऊ पहल करी है। महकमा रा शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा बतायो कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां रे मार्फत डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं ने पसारो दियो जावे है। अबे आखिर में खास समाचार एक फेर सुन रहो। केंद्रीय

0: मंत्रिमंडल तेल कंपनियां ने घरू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाना सारू 10,000 करोड़ रुपया री एक मुस्त बजटीय मदद मंजूर करी। भारत सौर ऊर्जा बूता में 155 गीगावाट रो आंकड़ो पार करने दुनिया रो दूजो सबो मोटो बाजार बन्यो। दक्षिण पश्चिम मानसून रे काले केरलम में आवण रा आसार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया री साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज। साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाई बहनों का चहेता कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम नंदू भाई, राम राम।
1: राम राम भावना भाई सर, राम राम।
0: और खेती और घर कार्यक्रम होने वाला हंगला किसान भाई ने भी अपनो
1: राम
0: राम
1: राम, राम
0: सा। देखो कार्यक्रम रो टाइम भी हो और हंगला जना जो है रेलिया रे अड़े भड़े आइन बैठ गया है। और नंदू भाई जाने हैं कि देखो सब बात बात रे जानकारी तो आप ही करावंगाई और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनावंगा सा।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो, कहीं कार्यक्रम में आप ही आवा तो आपने किसान भाई बातें बात बातरी जानकारी लेना आवा सा। चाहे देखो स्वास्थ्य संबंधित वो समसमय कई मुद्दों भी भेज सके, अंडे अलावा टाइम टाइम पे देखो कृषि विशेषज्ञ जो है वनाने भी अपने स्टूडियो में बुलावा, वनाओ भी बातचीत होनावा।
0: सही बात है सा।
1: कृषि रे क्षेत्र में नया नया कई आविष्कार वही रहा है, कया नया प्रयोग वही रहा है, वंडी जानकारी भी अपने किसान भाई बहनों ने दासा।
0: सही बात है। और देखो सा कार्यक्रम की शुरुआत करा और चौपाल रे बात करा तो देखो सा आज आप ही अपने कार्यक्रम में किसान भाई ने जानकारी दे दिया हाँ कि खेती बाड़ी रे काम में समय प्रबंधन रो कई महत्व है नी सा।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो कि देखो खेती रे काम में समय प्रबंधन रो अर्थ री आप ही बात करा तो
0: हाँ
1: देखो
0: हाँ
1: बीज बोऊ पहली हूँ लेन बीज बोवा रे तक और फसल कटाई हूँ भंडारण तक रा सब कार्य अणी में आवे सा। और मौसम री और समय री पूरी इच्छा और बंडे हिसाब काम करनो यो अंडे अंतर्गत आवे सा।
0: सही बात है। और देखो सर जटे आप ही बात करा समय प्रबंधन या टेम भी बात करे हाँ तो देखो सर खेती बाड़ी रा वणा कामा ने प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुसार सही समय पर संपन्न करनो ही समय प्रबंधन मान्यो जावे। और देखो सा किसान अगर पूरा वर्ष री कृषि गतिविधियां ने पूरी योजना बनाई काम करेगा तो निश्चित रूपों में मुनाफो और लाभ मिलेगा और समय प्रबंधन कार्य में अनुशासन आवे और संसाधन
1: आपकी खेती बाड़ी रो काम करा तो अपने काम में भी बड़ो महत्व है। और सब पहले अंडो लाभ की बात जटे करा तो देखो फसल उत्पादन में अंडे कारण वृद्धि
0: सही बात है
1: क्योंकि देखो कृषि कार्य ने आप टाइम पे पूरा करांगा तो फसल भी ठीक वेगा, समय पे बुआई वेगा, सिंचाई वेगा, उर्वरक रो प्रयोग वो भी समय पे वेगा और जितना भी आवश्यक कार्य है भी सब समय पे वेगा तो बंडे कारण देखो उपज भी अपने ठीक मिलेगा और अपने लाभ भी वेगा सा।
0: सही बात है। देखो सा हते हते नंदू भाई बात करा प्राकृतिक संसाधन रो उचित उपयोग री तो देखो सा खेती बाड़ी जो है मुख्य रूप मौसम और प्राकृतिक संसाधन पर आधारित है। समय प्रबंधन माध्यम किसान जो है वर्कार टेम तापमान और नमी रो उचित लाभ उठाई सके, समय पर बुआई करवा वर्षा जल रो अधिक उपयोग वेवे और सिंचाई की आवश्यकता भी कम पड़े सा।
1: बिल्कुल अंडे अलावा देखो लागत में भी कमी आवे
0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ।
1: देखो कतरे ही काम अगर आप अव्यवस्था करा तो अपने वो कतिदान गलती भी जावे कतिदान डबल दान भी करना पड़े
0: हाँ।
1: लेकिन अगर समय प्रबंधन रे हिसाब वही काम ने करांगा तो वो व्यवस्थित रूप वेगा और अणु कहिएगा अपना अतिरिक्त जी खर्चा है भी वंची जागा।
0: हाँ हाँ,
1: जैसे उदाहरण रे बात करा कि समय पर अगर आप खरपतवार नियंत्रण करांगा तो बनियों अपनो श्रम जो है वंडी लागत कम भी जाएगा।
0: सही बात है। और हाथ आते जोखिम हमारी कमी भी आएगा कि समय पर खेती बाड़ी रो काम करवाऊं प्राकृतिक आपदाएं कीटाओं और रोगों वेवा वाला

0: नुकसान ने कम की दुख जई सके। समय पर फसल कटाई करवाऊँ वर्षा रो ओलावृष्टि रो तेज हवाओं वेवा वाले नुकसानों भी बचो जई सके सा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ने देखो कृषि कार्य में अगर समय प्रबंधन आप ही करेंगा तो भूमि की तैयारी भी आप ही टाइम पे करेंगा, समय पे बुआई करेंगा, सिंचाई रो प्रबंधन जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भी बनी टाइम पे वेगा। और सब महत्वपूर्ण है कि देखो खाद रो कनी टाइम पे ऊपर उपयोग करना है, कनी टाइम पे उर्वरक डालना है, खरपतवार नियंत्रण जो है वो भी आपने खेता वाते गणो महत्वपूर्ण वेवे। ये सब काम जो है अपना टाइम पे वेगा सा।
0: सही बात है। और हाथ आते कीट और रोग प्रबंधन भी कर सकांगा, कटाई और भंडारण पे भी आप ही ध्यान दे सकांगा। तो कुल मिले तो आपने यो इस कहना है कि देखो सर समय प्रबंधन रे अगर लाभ री बात करा तो सबो पहलो तो यो है कि भाई फसल उत्पादन में वृद्धि वेवे।
1: बिल्कुल सा।
0: हाथ आते कृषि लागत में कमी आवे, श्रम और संसाधन रो बेहतर उपयोग वेवे और प्राकृतिक आपदों वाले नुकसान में भी कमी आवे सा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अंडे अलावा फसल री गुणवत्ता में भी सुधार वेवे। किसानारी जो आय जो है अपने प्रधानमंत्री जी जो भी लक्ष्य है कि दुगुनो करनो, वणी में भी अणी में मदद मिले। कृषि कार्य जितना भी है भी दक्षताओं और अनुशासन हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समय रो भी पालन वेवे और ऊर्जा राजी साधन है वनारी भी बचत वे सा।
0: हाथे हाथे देखो सा नंदू भाई बाजार में बेहतर मूल्य भी मले सा और कृषि ने जो आप ही लाभकारी व्यवसाय बढ़ावा में भी सहायता मिले। तो देखो सा कुल मिले तो आपने यो इस कहना है कि खेती बाड़ी में समय प्रबंधन सफलता रो आधार है। समय पर किदो लगो काम कृषि काम में न केवल उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ावा में मदद मिलावे बल्कि लागत ने कम करे, किसानारी आय में वृद्धि करे। और देखो सा अगर आप ही हर किसान भाई समय प्रबंधन नो अपने कृषि गतिविधियां रो अभिन्न अंग बनाना चाहे जणो कहिए कि बेहतर उत्पादन प्राप्त करें, आर्थिक समृद्धि दी और अग्रसर वे सके सा।
1: बिल्कुल आपनो तो अपने किसान भाई बहनों ने इस कहना ऐसा कि अपना कृषि कार्य कर रहे हो तो बंडे वाते पहली अपना एक समय प्रबंधन वंडी एक सूची बने लो कणी टाइम पे अपने कशो कार्य करना है। बंडे आधार पर वो काम करांगा तो अपनो ज्यादा जो है लाभ भी मिलेगा, उत्पादन भी मिलेगा और घर में देखो हंसी खुशी रो माहौल भी रहेगा सा।
0: सही बात है। देखो सर जैसे परिवार में चार पैरी आवन वे तो परिवार में खुशहाली छावे। और देखो सर एक चीज जो भी बताऊं कि कतरी बार मन भावन राजस्थानी लोकगीत सुनो भी मन प्रसन्न हो जावे।
1: बिल्कुल सा।
0: तो नंदू भाई आप कहो तो क्यों नहीं अपने कार्यक्रम के माध्यम में एक मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनावा नहीं सा।

0: મોનસૂન ની ગતિવિધિયા મેં થોડો સમય હે અને વાસ્તે ઉમસ ઓર ગરમી નો પ્રભાવ બન્યો રહેગા સા
1: બિલકુલ સાન અબે દેખો આવા વાલા ટાઈમ મેં આપણા કિસાન ભાઈ બહેના ને કશા કૃષિ સંબંધી કાર્ય કરના હે અંડે બારે મેં વાત કરા તો દેખો સબુ પહેલી મૃદા સ્વાસ્થ્ય કાર્ડ રી વાત કરા તો દેખો ખરીફ રી બુઆઈઓ પહેલી આપણે ખેતા ને अच्छी तरह सड़ी थकी गोबर री खाद या केचुआ खाद जो है वणी खेत में जरूर डाल देनी है।
0: हाँ।
1: और कही है कि मिट्टी री जल धारण क्षमता बढ़ेगा सा और जो पानी री में भी कम फसल ने कम पानी में भी फसल ने सहारो देगा। और अन्य अलावा देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे आधार पर मृदा रे स्वास्थ्य में वणी में कई कई कमी है वनडे बारे में अणी टाइम पे पतो भी लगाई सका ताकि फसल रे टाइम में वणी कमी ने पूरी करी जा सके।
0: सही बात है। और नंदू भाई देखो सा यो समय है आप ही कह सका जायद फसलारी कटाई मड़ाई और आवा वाली खरीफ सीजन की तैयारी रो संधि काल है।
1: बिल्कुल सा।
0: तो देखो सा सबो पहली खेत की तैयारी की बात करा कि जायद जो फसला है जिस तरह की मूंग उड़द और सब्जियां खाली वेवरे बाद खेता में गहरी जुताई जरूर करनी है और जून री तेज धूप में कई वेगा कि मिट्टी में जो मौजूद हानिकारक कीट है बीमारिया रा बैक्टीरिया है खरपतवार रा बीज है ये नष्ट हो जाएगा। और देखो सा आप इन्हें जैविक खेती रो एक मुख्य आधार भी मान सका सा।
1: बिल्कुल सान। अन्य अलावा किसान भाई यदि आपने खेत में मिर्च टमाटर बैंगन या कद्दू वर्गीय सब्जियां अगर लगे रखी है तो वना में नमी बनाए रखवा वास्ते केवल सुबह या जल्दी या शाम ने सिंचाई करे अणियो कही है कि केवल तेज धूप पानी देव पौधा झुलस सके तो अंडे कारण जो है नमी वना में वणी थकी रहेगा।
0: सही बात है। और देखो सर या तो वेगी सामान्य खेती बाड़ी संबंधित जानकारी और देखो सर अभी पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दा कि अणी भीषण गर्मी और लू रे मौसम में दुधारू पशुवारी विशेष देखभाल की आवश्यकता वे ताकि वना रो दूध उत्पादन प्रभावित नहीं वे। तो सब पहली लू बचाव और आवास की बात करा कि देखो सर पशुआ ने सीधा धूप या गर्म हवा रे थपेड़ो बचाना है। उन्होंने बांधवा रे स्थान पर बाड़ा पे टाट या बोरी रा पर्दा लटकाई वना पे पानी रो छिड़काव करनो चावे। और देखो सा हवारे वास्ते पंखा या पछे एग्जॉस्ट पंखा रो भी आप ही उपयोग कर सका।
1: बिल्कुल भावना बैसान। अंडे अलावा देखो गर्मी में पशु ने सामान्य अधिक पानी री आवश्यकता वे।
0: हाँ हाँ।
1: और वनारे वाते दिन में कमो कम 3-4 बार साफ और ठंडो पानी पीवारे वाते उपलब्ध कराना पड़ेगा।
0: सही बात है सा।
1: और पानी में थोड़ो सो नमक या ग्लूकोज भी मिले सकांगा और तो यो और भी फायदेमंद रहेगा सा।
0: सही बात है। देखो सा हरा चारा और पोषण री बात करा तो अणी समय पशुओं ने पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक हरो चारो जिस तरह की नेपियर ग्रास या पचे रचको देनो चावे और दोपहर रे समय पशुओं ने भारी दलियो देवो वशनो चावे वना ने सुबह या शाम रे ठंडा पोर में आपने दाणो मिश्रण आपी दे सका सा।
1: बिल्कुल सान। अबे देखो टीकाकरण री बात करा तो देखो मानसून आवो पहली पशुओं ने गलगोटू लंगड़ा बुखार जैसी घातक बीमारियों वंचावरे वाते टीका अवश्य लगवाई देवे सा किसान भाई बहन अपना। और आपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र संपर्क करें अणी कारण पूरो समय पर करे सा।
0: और देखो सा खुद रे वास्ते भी किसान भाई भी हावचेत रहे कि दन रे समय खुद ने भी लू बचावे और पर्याप्त मात्रा में पानी पीता रहे और खेता और पशुआ रो काम जो है सुबह या शाम रे ठंडे समय में ही निपटावा रो प्रयास करनो चावे। तो देखो सा ये छोटी छोटी वाता है चाहे वो खेती बाड़ी संबंधित वे पशुपालन संबंधित वे या किसान भाई रे खुद रे स्वास्थ्य संबंधी वे अगर भी ध्यान रखेगा हावचेत रहेगा तो निश्चित रूप देखो सा हर चीज में मुनाफो मिलेगा लाभ कमाएगा और भी खुद भी स्वस्थ और सजग रहेगा सा।
1: बिल्कुल भावना भाई सा। या तो देखो आप ही मौसम री जानकारी और आवा वाला टाइम में कृषि संबंधी किसान ने काम करना है बनारी जानकारी दीदी सा।
0: हाँ।
1: और अब यानी कार्यक्रम में आप ही आगे बढ़ा सा और एक राजस्थानी लोकगीत और हुणावा सा।
0: हाँ सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हाँ तो नंदू भाई यो तो सुनियो आप संदेश और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनियो सा।
2: बिल्कुल सान कार्यक्रम में देखो आप ही आगे बढ़ा तो देखो आप ही जाना कि देखो अपनी केंद्र सरकार वो चाहे राज्य सरकार वो आपने लोगों की भलाई रे बात है अलग अलग योजना समय समय पर लावे सा।
1: सही बात
2: और
1: है सा।
2: इस तरह देखो अपनी सरकार जो है किसाना रे बात भी अलग अलग योजना लावे सा। और बड़ा योजना रे बारे में अपने किसान भाई बहनों ने अपनी जानकारी दासा। और आज आप ही जनी योजना के बारे में जानकारी अपने किसान भाई बहना ने दी रहा वह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना सा।
1: सही बात है।
2: और आप ही जाना कि देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है जटे ज्यादातर लोग जो है खेती और बनी जुड़े थका काम में लागिया रहे सा। और किसाना ने जो खेती रे बात है टेम टेम पर बीज बात है खाद बात है कीटनाशक बात है सिंचाई बात है नवी नवी किसान मशीनरी वगैरह आवे वंडे बात है और दूसरी बहुत तरह का काम बात है प्यारी आवश्यकता पड़े सा।
1: सही बात
2: और
1: है।
2: पहले आप ही जानता कि देखो किसान अपनी आवश्यकता रे बात है पया जो है साहूकारों ऊंचा ब्याज पे लेता हा और धीरे धीरे कर्जा रे बोझ तले भी दबी जाता सा।
1: सही बात है।
2: और किसान ने सस्ती और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध करावा रे उद्देश्यों भारत सरकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक रे साथ में 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी सा।
1: सही बात है।
2: और यह योजना जो है किसान ने बना रहे कृषि संबंधी जितनी भी आवश्यकता है बनने सरल त्वरित और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करावाते शुरू की दिशा।
1: हाँ तो नंदू भाई यो भी आप ही किसान मैंने बतावा कि किसान क्रेडिट कार्ड है कई। देखो सर किसान क्रेडिट कार्ड एक विशेष प्रकार की बैंकिंग सुविधा है जिनके माध्यम किसान भाई जो है अपने खेती और कृषि संबंधी कार्य वास्ते आवश्यक ऋण मन में आसानी मिल जावे। यो एक प्रकार और क्रेडिट कार्ड है जिनके जरिए किसान आवश्यकता अनुसार निर्धारित सीमा तक ऋण प्राप्त कर सके और उपयोग कृषि कार्य वास्ते किदो जावे। और देखो साहब किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसान ने बार बार ऋण आवेदन करवारी परेशानियों बचावे और खेती रे लिए समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करावे सा।
2: बिल्कुल भावना भाई साहब अपने किसान भाई बहना ने आप ही कहना चाहूंगा कि देखो क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य कई है।
1: हाँ
2: तो पहला उद्देश्य है देखो किसान ने समय पे और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना।

0: बात
1: और
0: है।
1: अगला उद्देश्य जो है वंडी बात करा तो साहूकारा द्वारा जो किसाना पर पहली निर्भरता किसान मना पे ज्यादा निर्भर है
0: हाँ
1: उन्हें निर्भरता
0: हाँ
1: ने कम करनी सा।
0: सही बात है। और देखो सा हते हते आप ही बात करा, कृषि उत्पादन ने बढ़ावो देवारी और आने हते हते किसान भाई ने जो है कम ब्याज दर पर आसानी ऋण उपलब्ध वे रियो है, और कृषि और पशुपालन गतिविधियां ने भी प्रोत्साहन मिल रहे हुए। और देखो सा आप यूं कह सका कि अपना जो किसान है, भारत की जो रीढ़ जो हड्डी है, मतलब वह भी आर्थिक स्थितियों आप ही कह सका मनानी मजबूती आई रही है सा।
1: बिल्कुल भावना भाई साहब, किसान क्रेडिट कार्ड री विशेषता यही से कि देखो अणियों सरल ऋण सुविधा वे, मतलब कि
0: हाँ
1: बार बार किसान ने ऋण प्राप्त करना करवा वाते देखो अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़े और
0: हाँ
1: बार बार बैंक जावर की आवश्यकता भी नहीं पड़े, वंडे कोड़े वो कार्ड है वंडे माध्यम वो ले सके सा।
0: सही बात
1: अंडे
0: है।
1: अलावा अंडी एक विशेषता और यह है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: सरकार द्वारा ब्याज में अणी पे छूट दी जावे
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: समय पर ऋण चुकावा वाला किसाना ने तो ब्याज में अतिरिक्त राहत भी मल ले सा।
0: और देखो सर जटे बात करा कि अपने किसान जो है अपनी फसल की कटाई और बिक्री के बाद भी ऋण चुका ही सके, और अणियों कही है कि हमारे ऊपर मानसिक और आर्थिक दबाव कम वे। आते आते किसान जो है एटीएम बैंक शाखा या दूसरा कहीं भी बैंकिंग माध्यमों आवश्यकता अनुसार अपनो धन निकाल सके। और कई मामला में तो आप यो भी देखा कि किसान क्रेडिट कार्ड धारका ने फसल बीमा योजना रो लाभ भी प्राप्त वे वैसा।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो, देखो किसान क्रेडिट कार्ड लाभ मिल रहा है कि समय पर किसाना ने वित्तीय सहायता मिल रही है,
0: हाँ
1: जणियों
0: हाँ
1: कही है कि वणा ने तुरंत धन वणा ने जणी टाइम पे चाहिए रोवे वणी टाइम पे मिल जावे तो वंडो जो भी कृषि कार्य है वो रुके नहीं और वो काम टाइम पे पूरो वही जावे
0: सही
1: सा।
0: बात है। और देखो सा साहूकारों भी मुक्ति मिल रही है, किसाना ने ऊंची ब्याज दर पर निजी ऋण लेवर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
1: बिल्कुल सान, अंडे अलावा बीज वाते खाद वाते और दूसरी जितनी भी कृषि संबंधी चीजा है
0: हाँ
1: वंडे
0: हाँ
1: वाते वणा ने पयो जो है टाइम पे उपलब्ध वे जावे सा, वणियों कही है कि वणारो उत्पादन भी वंडरी वजह बढ़ जावे
0: और
1: सा।
0: देखो सा आर्थिक सुरक्षा की बात करें, हाँ तो किसान भाई जो है आपातकालीन परिस्थितियां में भी आर्थिक वणा ने सहायता आसानी मिल जावे सा।
1: बिल्कुल भावना भाई साहब, अंडे अलावा किसान क्रेडिट कार्ड रो लाभ केवल खेती तक ही सीमित नहीं है
0: हाँ
1: बल्कि
0: हाँ
1: पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन करवा वाला किसान ने भी अंडो लाभ दियो जावे
0: सही
1: सा।
0: बात है। देखो सर जैसे बात कर रहे हैं कि अंडो आसान दस्तावेज प्रक्रिया है, दूसरी ऋण योजना की तुलना में अंडी प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है सा।
1: बिल्कुल आप भी क्रिया हो कि आवश्यक दस्तावेज री जटे आप बात की दी है तो
0: हाँ
1: अंडे वाते
0: हाँ
1: आधार कार्ड पहचान कार्ड निवास प्रमाण पत्र भूमि संबंधी दस्तावेज बैंक खाता विवरण पासपोर्ट आकार रा फोटो और मोबाइल नंबर अगर यो लेन जावे तो बनियो अनारो यो काम भई जावे
0: और
1: सा।
0: देखो सर किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करवारी प्रक्रिया में बात करा तो सबों पहले आपने निकटतम जो बैंक शाखा है वन में आवेदन करना है, आवेदन पत्र भरना है, आवश्यक दस्तावेज जमा कराना है, बैंक द्वारा सत्यापन की दो जाएगा, पात्रता अनुसार ऋण सीमा निर्धारित की दी जाएगा, और हाथे हाथे किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दी दो जाएगा
1: बिल्कुल
0: सा।
1: आप ठीक ही रहे हो कि देखो किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण किसान हितैषी योजना है
0: हाँ
1: सा। या
0: हाँ
1: किसाना ने कम ब्याज दर पर समय पर ऋण उपलब्ध कराई वनारी
0: हाँ
1: आर्थिक स्थिति ने मजबूत कर रही है सा। के सी सी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है किसाना ने साहूकार रे चंगुलू वंचाई रही है, कृषि उत्पादन ने बढ़ावा में सहयोग कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने सशक्त बनावा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई रही है
0: सही बात है
1: और
0: सा।
1: अणि योजना रो लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचायो जावे तो या कृषि विकास और किसान कल्याण की दिशा में एक बहुत ही प्रभावी साधन सिद्ध वेगा। अंडे बात है देखो किसाना ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना रो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठानो चावे और जना किसाना ने अंडे बारे में जानकारी नहीं है वना किसाना ने भी अंडे बारे में जानकारी देवे ताकि भी किसान भी अंडी योजना रो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाई सके सा।
0: तो निश्चित रूप देखो सा नंदू भाई मु तो यही आशा कर रही हूँ कि जटे आप ही अपने कार्यक्रम रे माध्यम किसान क्रेडिट कार्ड रे महत्व रही और उद्देश्य रही और पात्रता रही जानकारी किसान भाई ने दी दी, तो निश्चित रूप वी भी अणि किसान क्रेडिट कार्ड रो अपनो पंजीकरण कराई लाभ उठाएगा। और देखो सर जटे लाभ वेगा तो आप ही कहा ना कि भाई सब चीज़ा सुचारू रूपो
1: बिल्कुल सा
0: संपन्न वेगा।
1: बिल्कुल सा,
0: और देखो सा आप कहो तो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक और मन भवन राजस्थानी लोकगीत अपने कार्यक्रम में माध्यम सुनावा नहीं सा।
1: बिल्कुल हुणा मसा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो नंदू भाई यो तो सुनियो आप संदेश और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनियो सा। और देखो सा अबे टाइम वेरियो है जानकारी रो। और आप ही किसान मैंने बतावा कि जो कृषि विशेषज्ञ वे मुणो बातचीत करवा रहा कई कई लाभ है और किस तरह वणी लाभ ने आपने दैनिक जीवन में अपने खेती बाड़ी में वंडो उपयोग लेनो वंडे बारे में आप ही आज अपने कार्यक्रम में जानकारी देवा। कि देखो सा कृषि विशेषज्ञ वी व्यक्ति वे जनारे पास खेती बाड़ी विज्ञान फसल उत्पादन मिट्टी विज्ञान कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी की पशुपालन और कृषि अर्थशास्त्र रो विशेष ज्ञान वे। और ये विशेषज्ञ जो है कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग और अनुसंधान संस्थान में कार्यरत वे। वणारो मुख्य उद्देश्य जो है किसान भाइया ने वैज्ञानिक सलाह देन खेती बाड़ी रो काम में उत्पादन ने बढ़ानो और लाभ ने बढ़ावा में सहायता करनो वैसा।
3: बिल्कुल भावना वैसा अपने किसान भाई बहनों ने अभी बताना चाहूंगा कि देखो वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीका उन्नत बीज आधुनिक कृषि यंत्र वैज्ञानिक खेती री विधियां रो तेजू विकास वेरो है सा। आशा में किसाना ने नवीन जानकारियों अपडेट रहनो बहुत ही जरूरी वेग्यो है सा। और कृषि विशेषज्ञ किसाना ने वैज्ञानिक खेती फसल प्रबंधन कीट एवं रोग नियंत्रण उर्वरक प्रबंधन बाजार संबंधी जानकारियां देवे सा। कृषि विशेषज्ञों नियमित संवाद अगर किसाना रो वे तो ज्ञान उत्पादन और आय में वृद्धि व्यवहारों एक प्रभावी यो माध्यम भी सके सा।
2: सही बात है। देखो सर जटे कृषि विशेषज्ञों संवाद रे महत्व री बात करे हाँ तो सबों पहली बात करा आधुनिक कृषि तकनीकारी जानकारी। तो कृषि विशेषज्ञ जो है किसाना ने आधुनिक खेती री जानकारी रे बारे में अवगत करावे वे उन्नत बीज ड्रिप सिंचाई स्प्रिंकलर सिंचाई जैविक खेती और संरक्षित खेती जैसी नवीन तकनीकों किसान भाई ने परिचित करावे। अणु कहिए कि किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके सा।
3: बिल्कुल भावना बैसा फसल री सफलता काफी हद तक देखो वनारे बीज पर निर्भर करे।
2: हाँ।
3: कि बीज री गुणवत्ता कणी तरह री है।
2: सही बात है।
3: कृषि विशेषज्ञ जो है वणी क्षेत्र विशेष में जो है मौसम री और मिट्टी री परिस्थिति री अनुसार जो है कशा बीज उपयुक्त रहेगा वणी क्षेत्र विशेष में वी बतेन किसाना री सहायता करे। अणु कहे के फसल और उत्पादन और गुणवत्ता में भी वृद्धि वे वैसा।
2: और हाथे हाथे देखो सा मिट्टी रो परीक्षण और पोषण प्रबंधन में भी वे अपनी मदद करे। कि विशेषज्ञ किसाना ने मिट्टी परीक्षण करावा में और वणारी रिपोर्ट रे आधार पर उर्वरक ने संतुलित उपयोग री सलाह देवे। अणु मिट्टी री उर्वरकता वणी रहे और फसल जो आवश्यक पोषक तत्व है वणारी उचित मात्रा वणा खेती बाड़ी में वापर सके सा।
3: बिल्कुल आप ठीक ही रहो। अंडे अलावा मिट्टी रे परीक्षण रे अलावा कीट और रोग नियंत्रण में भी देखो विशेषज्ञ जो है अपनी सलाह देवे सा।
2: हाँ।
3: और समय पर सलाह अगर किसान भाई बहनों ने मिल जावे

0: वो फसल में जो नुकसान वे तो वो नुकसान कम वे सके और किसान ने अणी तरह हानियों वंचनों वे जाए सके।
1: सही बात है। और देखो सा हता है जल प्रबंधन में सहायता करे कि जल की कमी हो, आज आपका किसान भाई जो है बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल साहब,
1: और जो कृषि विशेषज्ञ है किसाना ने जल संरक्षण और कुशल सिंचाई तकनीक की जानकारी देवे, अणु पानी की बचत वेवे और फसल उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े सा।
0: भावना भाई साहब विशेषज्ञ हूँ, अगर आपकी सलाह ला
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कार्य बंडे आधार पर आप ही करा तो देखो अपना अनावश्यक जी भी खर्चा है वना में भी कमी आई जावे
1: हाँ
0: साहब।
1: हाँ
0: उर्वरक है, कीटनाशक है, सिंचाई रे संसाधन है, वना रो संचुलित उपयोग वेवे और किसान रो उत्पादन बढ़े लेकिन लागत भी कम वे जा साहब।
1: हाते हाते वैज्ञानिक सलाह के अनुसार अगर आप खेती करेंगे तो फसल उत्पादन बढ़ेगा, अच्छी गुणवत्ता वाली उपज बाजार में बेहतर मूल्य में आप ही प्राप्त कर सका। जानियो कहिए कि किसान भाई की आय में वृद्धि वेगा सा।
0: बिल्कुल सान, अंडे अलावा मौसम संबंधी जानकारी भी मिले हैं, नई नई सरकारी योजनाएं कशी कशी चल रही है वनडे बारे में भी जानकारी मिले।
1: हाँ
0: अंडे
1: हाँ
0: अलावा किसान लोगों ने देखो फसल विविधीकरण कई है वनडे बारे में भी किसान लोगों ने सलाह मले साहब।
1: सही बात है। और कई बार देखो सा किसान जो है सरकारी योजना की जानकारी बनाने नहीं पता चले तो कृषि विशेषज्ञ जो है किसाना ने अलग अलग कृषि योजना अनुदान बीमा योजना और ऋण सुविधा की जानकारी भी देवे सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो कि कृषि विशेषज्ञों संवाद जो है आधुनिक कृषि जो खेती है वंडी सफलता रो महत्वपूर्ण आधार बनी गयो है
1: हाँ
0: साहब।
1: हाँ
0: और विशेषज्ञ री सलाहों किसान नई तकनीक ने अपनाइन अपनो उत्पादन बढ़ा सके, लागत कम कर सके और अपनी आय में वृद्धि भी कर सके
1: सही
0: साहब।
1: बात है। और देखो सा या तो वेगी कृषि विशेषज्ञों संवाद लाभ रे बारे में जानकारी और देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक और मनभावन राजस्थानी लोकगीत अपने कार्यक्रम रे माध्यम सुनावा
0: बिल्कुल
1: सा।
0: उन्होंने साहब।

0: तो भावना भाई से यो हुणियो अपी राजस्थानी लोकगीत
1: हाँ
0: और कार्यक्रम में
1: हाँ
0: देखो आप ही आगे बढ़ा। तो देखो आज 3 जून है और आज पूरा विश्व में एक दिवस मनाई जा रही है, विश्व साइकिल दिवस सा।
1: सही बात है।
0: और विश्व साइकिल दिवस की जटे बात करा तो 3 जून ने यो आपी आज रे दिन मनाई रहा और अन्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में घोषित करी गयो हो, ताकि देखो साइकिल रो उपयोग में और बंडी बहुमुखी प्रतिभा ने मान्यता दी जा सके
1: सही
0: सा।
1: बात है। और देखो सा, साइकिल एक सरल, किफायती, स्वच्छ और पर्यावरण रे अनुकूल परिवहन रो साधन है। और जटे लाभ री बात करा तो स्वास्थ्य और फिटनेस में नियमित रूपो साइकिल चलावो, वजन नियंत्रित रहे, हृदय स्वस्थ रहे और मांसपेशियां ने भी मजबूती मिले सा।
0: बिल्कुल, अपनो स्वास्थ्य तो ठीक ही रहे, अपने पर्यावरण रो स्वास्थ्य भी ठीक रहे, यानी
1: हाँ
0: कि पर्यावरण
1: हाँ
0: संरक्षण ने यो बहुत ही ज़्यादा मजबूत करे सा। और अंडो उपयोग करनो पर्यावरण प्रदूषण ने कम करे और कार्बन उत्सर्जन में कमी भी आवे सा।
1: सही बात है। और जटे विश्व साइकिल दिवस मनावरे उद्देश्य री बात कर रहे हाँ, तो सबों पहले साइकिल रे उपयोग ने बढ़ावो देनो है, पर्यावरण प्रदूषण ने कम करनो है, लोगा रे शारीरिक रूप स्वस्थ बनानो है, हाथे हाथे टिकाऊ और हरित जो परिवहन है विने प्रोत्साहित करनो है, सड़क सुरक्षा रे प्रति जागरूकता बढ़ानो है और हाथे हाथे ईंधन री बचत भी करनो है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक किया। और 2026 री अंडी विषय या थीम री बात करा तो अंडी थीम है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: भारत भर में वेवा वाला कार्यक्रम में जो है सामूहिक साइक्लोथ्रॉन और अंडे अलावा साइकिलिंग रा कार्यक्रम उत्सव अंडे अंतर्गत वही रहा है
1: तो
0: सा।
1: देखो सा, विश्व साइकिल दिवस पर आपने तो यो ही संदेश देना है कि साइकिल जो है एक परिवहन रो साधन नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्या रे प्रति सजग रेवारो एक अत्यंत आवश्यक माध्यम है। आपने दैनिक जीवन में अधिक को अधिक साइकिल रो उपयोग करना चाहे और दूसरा ने भी अंडे वास्ते प्रेरित करना चाहे। तो देखो सा, जदीस आप ही कह सका कि विश्व साइकिल दिवस मनावरो वास्तविक उद्देश्य आप ही हासिल कर सकांगा।
0: बिल्कुल सा, या तो देखो आपकी जानकारी दीदी सा, अबे आपने कार्यक्रम में एक राजस्थानी लोकगीत और हुणावा सा।
1: हाँ सा।

0: हाँ तो नंदू भाई यो तो सुनियो आप ही मन भावन राजस्थानी लोकगीत सा और देखो सा घड़ी रानी नारो तो आपने कार्यक्रम में दा आटे विराम और आपने चालवारो टेम वे यू है आप ही चाला सा
1: जय जवान
0: जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों का चहेता कार्यक्रम खेती और घर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों का कार्यक्रम में स्वागत है। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आपने सुना। आवाजें तोची रेना और रेखा भारद्वाज की थी, और ये गीत हमने आपके लिए चुना था फिल्म ये जवानी है दीवानी। और अब आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर। मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम रॉकस्टार।

0: नहीं है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बर्फी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आवाज़ रेखा भारद्वाज की। और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत ए हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है सपने।

जब वी मेट, इस फिल्म का एक गीत अभी आप सुन रहे थे शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ों में। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे आकाशवाणी उदयपुर से और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म का नाम है तुम मिले, आवाज़ जावेद अली की।

0: जावेद अली और साथियों की आवाज़ों में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे होगी अंग्रेजी में News@9 हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी

0: चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रूपये भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल

0: रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोक भवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns

0: समस्या हल होती है।
1: द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन 2015 हैज आल्सो इवॉल्वड इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। अंडर द स्कीम 40 लाख करोड़ रुपीज ऑफ लोन्स हैव बीन डिसबर्स्ड टू द बेनिफिशियरीज सो फार। एज इनकम्स राइज एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड, इंडियाज मिडिल क्लास इज एक्टिवली ड्राइविंग द नेशंस ग्रोथ एम्बिशन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। आनंद कुमार, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
2: Prime Minister Narendra Modi has congratulated Mette Frederiksen on assuming office.

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 होने को हैं।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी उदयपुर है और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से।
3: चर्चा का विषय है ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
4: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है।

0: आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जब मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
0: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीआर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में दो दिन बाद मंगलवार को, शुक्रवार को, कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी

0: किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मॉनसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण वैली भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके वजह से कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, जिसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए, यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
0: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी की उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी।

0: हम ये बताना चाहते हैं, अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
0: अगर धान की सब कुछ क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है, तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उसको ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के, या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोस्फेयर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के पूंछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी,
0: करती है,
1: बिल्कुल डबास जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं
1: जी,
0: और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या अगर और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उन प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो, और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशंस होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है, हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशंस होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें एक अगर

0: जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एलिनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए निगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी एक कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है, और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेस्टल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है, तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं, और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है खासकर मास मीडिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और साथ में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हमें इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है

0: कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
1: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर रिलेटेड ह्यूमिडिटी है, उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशंस होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी उपाय पहले से बनाए रखे।
0: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री है उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
1: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में किया, अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेयर।

0: प्रोसेस को लेकर के कि वातावरण में, एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहा है उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान
1: जी
0: दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जाकिर हुसैन का तबला वादन।

The regretta.

Get it,

The record.

Dark,

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। इस समय रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के

0: मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।